0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। भारत और वियतनाम ने डिजिटल प्रौद्योगिकी, दुर्लभ तत्व, चिकित्सा उत्पाद, विनियमन, सार्वजनिक क्षेत्र लेखा परीक्षा, डिजिटल भुगतान प्रणाली और संस्कृति तथा पर्यटन के क्षेत्र में कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम के बीच हुई वार्ता के बाद ये समझौते हुए। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की गई।
1: हम अपने संबंधों को एनहेंस कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं। अब हम अपनी साझेदारी को और ऊंचे लक्ष्यों की ओर अग्रसर करेंगे। कल्चर, कनेक्टिविटी और कैपेसिटी बिल्डिंग के साथ साथ सिक्योरिटी, सस्टेनेबिलिटी और सप्लाई चेन रेजिलियंस, हर क्षेत्र में हमारा सहयोग नए स्तर पर पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि साझा विरासत को जीवित रखने के लिए भारत वियतनाम की प्राचीन चंपा सभ्यता के माई सोन और नहान ताओ मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कल शाम राष्ट्रपति भवन में वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम का स्वागत किया। राष्ट्रपति ने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और वियतनाम के बीच उन्नत व्यापक रणनीतिक साझेदारी से दोनों देशों के सहयोग को नई गति मिलेगी और क्षेत्र में शांति तथा समृद्धि को बढ़ावा मिलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। साथ ही भविष्य के लिए मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता विकसित करने की रूपरेखा तैयार की जाएगी। इस दौरान स्वदेशी तकनीक से विकसित आधुनिक सैन्य प्रणालियों का प्रदर्शन भी किया जाएगा। विदेश मंत्री डॉ. सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल से 40 वर्ष तथा उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए देशव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत करेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी की सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 235 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए पंजाब किंग्स निर्धारित 20 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 202 रन ही बना सकी। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने केरल, माहे, दक्षिण आंध्रिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में कुछ स्थानों पर तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने कहा कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल और उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों में बिजली गरजने और तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: सुबह की शुरुआत आपके साथ सुन रहे हैं सुहानी सुबह 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। आज सुबह की शुरुआत डेफिनेटली सुहानी सुबह कार्यक्रम से होगी और उसमें भी आपके साथ, आज हमारे साथ भी तो आपकी सुबह की शुरुआत होगी। आपकी अपनी आरजी सुलक्षणा पर्वत तहे दिल से आप सभी का खैर मकदम करती है, स्वागत करती है, वेलकम करती है सुहानी सुबह में। और जैसा कि मैं अक्सर कहती हूँ कि सुबह को अगर बहुत ही खूबसूरत बनाना है तो मुस्कुराना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग सोकर उठते ही मुस्कुराते हैं ना, वाकई में खुशियाँ भी उन पर मुस्कुराती हैं। तो चलिए आगाज़ करते हैं इस कार्यक्रम का उस गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम से, और इस गीत को आप सुनेंगे कोकिल कंठी लता मंगेशकर की आवाज़ में।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: जिंदगी परीक्षा के लिए नहीं है, हमारे जीवन को बनाने के लिए शिक्षा एक माध्यम है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

एक बार फिर तहे दिल से आप सभी श्रोताओं का स्वागत करती हूं मैं, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होता है कि हाँ ठीक 7 के 7 बजे आप ट्यून इन करें, हो सकता है कि 2-3 मिनट लेट हो जाए, तो ऐसे में भला सिलेक्शन आपका स्वागत नहीं करेगी? बिल्कुल करेगी। आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूं। और ऐसा है दोस्तों कि हर एक नई सुबह जो है हमारे लिए एक नई जिंदगी की तरह है। मतलब हम इतने एनर्जी से भरे रहते हैं ना कि अगर सुबह ठान ले कि हाँ हमें सारा काम सही से करना है, फिर भला कौन ऐसा है जो हमें रोक सकता है। इसी बात पे सुनते हैं अगला गीत, आजकल जिंदगी, शंकर महादेवन की आवाज में, फिल्म वेकअप सिद से।

0: शुरू की घड़ी में समय हो चला है 7:17 और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है खरा सोना वाला चैनल यानी कि कोलकाता का 100.1 एफएम गोल्ड, आकाशवाणी कोलकाता का एफएम गोल्ड चैनल, और सुन रहे कार्यक्रम सुहानी सुबह आपकी अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और एक बहुत ही खूबसूरत बात बताने वाली हूँ, और यूं ही मैं तो हमेशा खूबसूरत बातें ही करती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि सबको खूबसूरत बातें ही, अच्छी बातें ही सुनने को मन करता है। अगर कभी भी खुद पे संदेह हो ना कि आप कब सबसे ज्यादा सुंदर लगते हो, तो बस एक बात याद रखना, जब आप मुस्कुराते हो तो वाकई में बहुत ही खूबसूरत लगते हो। तो चलिए इसी बात पर अगला गाना तो मैं सुनाऊंगी आपको, लेकिन आज वेदर कैसा रहेगा ये भी आपको बता दूं। लोकल फोरकास्ट अगले 24 घंटे के लिए जो है आज 7/5/2026 की सुबह बता दूं आपको, आसमान में हल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की बारिश गरज के साथ बौछार पड़ने की संभावना है। अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो है वो क्रमशः 34°C और 25°C के आसपास रहने की संभावना है। मैक्सिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 33.7°C सामान्य से -2.0°C कम है। मिनिमम टेम्परेचर की बात करूं तो 25°C सामान्य से -1.8°C, और मैक्सिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 95%, मिनिमम रिलेटिव ह्यूमिडिटी की बात करूं तो 61%। और अब आते हैं अगली बात जो है बारिश से रिलेटेड, आपको बता दूं 6/5/2026 से सुबह 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम से 7/5/2026 को सुबह 6:30 इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के बीच बारिश जो हुई है वो है 0.008 mm। और वेस्ट बंगाल के मछुआरों के लिए मौसम की चेतावनी वैसी कोई खास नहीं है, लेकिन किसानों के लिए चेतावनी है। सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के मालदा और नॉर्थ और साउथ दिनाजपुर जिले में एक या दो जगहों पर तेज हवा 40-50 km/h के साथ आंधी तूफान और बिजली गिरने की संभावना है। दूसरी बात यह कि सब हिमालयन वेस्ट बंगाल के बाकी जिलों और गंगीय वेस्ट बंगाल के पुरुलिया, बांकुरा, झारग्राम, वेस्ट मिदनापुर, वेस्ट बर्दवान, हुगली और हावड़ा जिले में एक या दो जगहों पर तेज हवा 30-40 km/h के साथ आंधी तूफान और बिजली की बहुत संभावना है।
1: Six, five, four, three,

क्यों, मजा तो आ ही रहा होगा कार्यक्रम सुनने में। और भला आए क्यों नहीं, कार्यक्रम जब हो सुहानी सुबह तो सुबह सुहानी तो आप रूपी ही हो जाती है। चलिए आपको बता दूं दोस्तों कि हर दिन अपने आप में खास होता है।

और आज जो है वो वाकई में मतलब आज के दिन के बारे में कहूँगी ना तो आपको मन करेगा कि आप घर से बाहर निकले, खूब खेले कूदे दौड़े और बाहर धूम मचाए। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कौन सा दिन है, तो मैं आपको बता दूं कि आज है वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। हर साल 7 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य युवाओं को एथलेटिक्स दौड़ कूद फेंक के प्रति प्रोत्साहित करना और स्वास्थ्य एवं फिटनेस के प्रति जागरूक करना है। इस दिन स्कूलों और कॉलेजों में खेल प्रतियोगिताओं यानी कंपटीशन का आयोजन किया जाता है, जिसकी शुरुआत 1996 में हुई थी। और उद्देश्य की बात करूं तो युवा पीढ़ी में एथलेटिक्स के प्रति रुचि बढ़ाना और उन्हें खेलों में भाग लेने के लिए प्रेरित करना। तो क्यों सोच रहे ना कि आज आप भी दौड़ भाग करेंगे, कोई आउटडोर गेम खेलेंगे, बैडमिंटन हो, टेनिस हो, दौड़ भाग हो, जिसमें आपको जो है ना थोड़ा कैलोरी भी आपका जो है ना मतलब घटेगा। और एक दिन अगर आप ये कोशिश करेंगे तो कल भी निसंदेह करेंगे, क्योंकि क्या है ना कि बचपन में तो बहुत सारे लोग करते हैं और आजकल तो बचपन में भी जो है बच्चे, छोटे बच्चे बाहर जो है वो खेलना ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उन्हें हमें प्रोत्साहित करना पड़ेगा कि नहीं बच्चे बाहर निकलो, थोड़ा दौड़ो, थोड़ा एक्सरसाइज करो, खेल कूद करो, जो कि आउटडोर गेम्स में बहुत सारे खेल हैं। और फिलहाल रुक करते हैं उस गीत की ओर जिसे हमने लिया है फ्रॉम द मूवी भाग मिल्खा भाग।

ऐसा है दोस्तों कि अब इतिहास के पन्नों में 7 मई से जुड़ी कौन कौन सी बातें हैं जो जुड़ी हुई हैं, सब नहीं लेकिन कुछ एकाध तो आपसे साझा करूंगी ही, लेकिन ये जो मैं बताऊंगी इतिहास के पन्नों में 7 तारीख से रिलेटेड बातें, ये ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी कि जो अंग्रेजी में कैलेंडर है उसके हिसाब से बताऊंगी, बंगला कैलेंडर या फिर हमारे जो विक्रम संवत है हिंदी कैलेंडर के हिसाब से नहीं। तो अगर हम उस कैलेंडर के हिसाब से देखें, ग्रेगोरियन कैलेंडर के हिसाब से, तो 7 मई के इतिहास की बात करूं तो देश के साहित्य जगत के लिए 7 मई का दिन इतिहास में सुनहरे शब्दों में लिखा गया है। 1861 में आज ही के दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था, जिन्हें एक कवि, लघु कथा लेखक, गीतकार, संगीतकार, नाटककार, निबंध लेखक और चित्रकार के तौर पर इतिहास में एक युग पुरुष का दर्जा हासिल है। उन्हें भारतीय संस्कृति और पश्चिमी दुनिया से परिचित कराने का जो है श्रेय जाता है। उन्हें 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों के भारत के सबसे प्रभावी व्यक्तित्व में शुमार किया जाता है। 1913 में उन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया और वो ये पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले गैर यूरोपियन थे। देश और दुनिया के इतिहास में 7 मई की तारीख पर दर्ज और भी मतलब अन्य जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं उसके बारे में भी मैं आपसे साझा करूंगी। बात करूं 1663 की तो प्रसिद्ध नाटककार थॉमस किल्लरुगु द्वारा निर्मित रॉयल थिएटर की लंदन में शुरुआत हुई थी। 7 मई 1834 को ईस्ट इंडिया कंपनी के कुर्ग राज्य का कब्जा कर लिया गया और 1861 में 7 मई को प्रसिद्ध बंगला कवि, जैसे कि मैंने कहा कि कहानीकार, गीतकार, नाटककार, निबंधकार, चित्रकार गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था। और 1907 में मुंबई में बिजली से चलने वाली पहली ट्राम कार चलाई गई। वहीं अगर बात करूं 7 मई 1912 की तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के विभिन्न श्रेणियों में प्लिजर पुरस्कार प्रदान करने की योजना को मंजूरी दी। इसकी स्थापना जोसेफ पुल्सर ने की थी और 1928 में ब्रिटेन में महिलाओं की वोट देने की आयु 30 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष कर दी गई थी। वहीं अगर बात करूं 7 मई 1945 की तो जर्मनी के जनरल गुस्ताव जोडल ने आत्मसमर्पण के कागजों पर दस्तखत किए और इसके साथ ही यूरोप में 6 साल से चल रही युद्ध का अंत हुआ। इस संबंध में लंदन, मॉस्को और वॉशिंगटन में सरकारी बयान जारी किया गया था। 1946 में 7 मई को इबुका मसारू और मोरिता ओकियो ने उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद बनाने वाली जापानी कंपनी सोनी कॉर्पोरेशन की स्थापना की। 1950

1982 में इंटीग्रेटेड सर्किट की अवधारणा पहली बार जोसेफ ड्रमर में प्रकाशित, और 1956 में ब्रिटेन के विदेश मंत्री ने धूम्रपान के विरोध में किए जा रहे तमाम अभियानों को खारिज करते हुए कहा कि धूम्रपान के बारे में जो है बुरे प्रभाव के तथ्य जो है अभी तक सामने नहीं आए हैं, ये उनका मानना था और कहना था। 1973 में ईटानगर को पूर्वोत्तर के खूबसूरत प्रांत अरुणाचल प्रदेश की नई राजधानी बनाने का काम शुरू किया गया। 2012 में 7 मई को व्लादिमीर पुतिन के 6 वर्ष की कार्यकाल के लिए तीसरी बार रूस के राष्ट्रपति पद की शपथ ली, और 2015 में ब्रिटेन के आम चुनाव में डेविड कैमरून फिर से प्रधानमंत्री बने। 7 मई को उनकी जो है कंजर्वेटिव पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। तो अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए यही कहूंगी, यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने से,

खेल प्रेमियों के लिए भी एक अच्छी खबर है, और वो अच्छी खबर ये है कि आईपीएल 2026 में आज यानी 7 मई को क्रिकेट फैंस को एक बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच सीजन का 50वां मैच खेला जाएगा। ये मुकाबला लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से शुरू होगा।

मैं कोई ऐसा गीत गाऊं, इस गीत को आपने सुना फिल्म यस बॉस से अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज में। इस गीत को बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया है जावेद अख्तर ने और संगीत का जादू मैजिक है जतिन ललित का। और अब अगला गाना आप सभी के लिए फिल्म आ गले लग जा से किशोर कुमार और सुषमा श्रेष्ठा की आवाज में।

स्टूडियो की घड़ी में समय उछला है 7:52 और इस वक्त आपने ट्यून कर रखा है आकाशवाणी कोलकाता का 100.1 FM गोल्ड, यानी कि आपका अपना वाला खरा सोना वाला चैनल, और सुन रहे कार्यक्रम सुहानी सुबह अपनी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत के संग। और अब थोड़ी देर में कार्यक्रम को विराम देना पड़ेगा। वैसे क्या है ना कि अभी अगर जाऊंगी भी मैं 8 बजे तो वापस तो आऊंगी ही FM गोल्ड पर 11:10 पर लेकर कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद। और ऐसा है दोस्तों कि सुबह सुबह जो है ना थोड़ी मोटिवेशनल बातें होती है ना, तो मतलब क्या है ना, ऐसा लगता है मानो हर इंसान को पंख मिल जाता है। और भला ऐसा कौन है जो उड़ान नहीं भरना चाहता है। अब ये नहीं कहूंगी कि आपको गाना सुनवाऊंगी मैं पंछी बनूं उड़ते फिरूं मस्त गगन में, हाँ ये जरूर कहूंगी एक छोटी सी सच्ची कहानी सुनाऊंगी। कहा जाता है कि जो इंसान हर मुश्किल के बाद भी खड़ा रहना जानता है वही आगे जाकर जीत हासिल करता है। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में नारनौल से आने वाले मोहित यादव उसी जज्बे की मिसाल हैं। उन्होंने किसान पिता के संघर्ष को अपनी ताकत बनाया, बीमारी में भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं रोकी। मोहित यादव ने एक दो नहीं बल्कि कई यूपीएससी और एसएससी एग्जाम क्रैक किए। फिलहाल देश की सबसे प्रतिष्ठित जांच एजेंसी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन में जो है वो सब इंस्पेक्टर के पद पर हैं। तो यही होता है जब हम हार नहीं मानते हैं और लगातार कोशिश करते हैं, तो जिस काम में भी हम कोशिश करते हैं उसमें सफलता तो मिल ही है। और फिलहाल इसी बात पर आपको मैं सुनाना चाहूंगी फिल्म इकबाल से अजी कौन सा गाना, वही के और सलीम मर्चेंट की आवाज में इस गीत को आप सुनेंगे। और इस गीत को सुनते सुनते आप मुझे आज्ञा तो देंगे, लेकिन ये भी बता दूं कि इस गीत को बड़े ही मोटिवेशनल अंदाज में किसने लिखा है, इरफान सिद्दीकी ने, और संगीत से सवारा है सलीम सुलेमान ने। और अब यही है कि बस कहूंगी कि आपका दिन जो है बहुत ही खुशनुमा रहे, बहुत ही सफल रहे, और आपका दिन जो है बहुत ही मंगलमय हो। और मंगलमय अगर दिन आप करना चाहते हैं तो जरूरी है कि आप आलस ना करें। और जो लोग अब तक नहीं उठे हैं ना, बिल्कुल अब यही है समय, उठ जाओ, क्योंकि अब अगर और देर करोगे तो फिर हो सकता है ट्रेन छूट जाए। अब ट्रेन छूट जाने का मतलब ये नहीं कि सचमुच में ट्रेन छूट जाए।

आपके जीवन में जो अपॉर्चुनिटीज आने वाली है ना आज के दिन, कहीं उससे ना हाथ धोना पड़ जाए। तो इसीलिए उठ जाइए फटाफट और क्या, दिन की शुरुआत कीजिए।

0: और अब मुख्य समाचार। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी की गोली मारकर हत्या। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जल डमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। और अब समाचार विस्तार से। केरलम के नव निर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे मुलाकात करेंगे। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है और वो फिलहाल चेन्नई में है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फार्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। इसके अतिरिक्त लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास से 2, हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 प्रतिनिधि को भी मंत्रिमंडल में शामिल किए जाने की उम्मीद है। तमिलनाडु में द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने कहा है कि उनकी पार्टी राज्य में नई पार्टी को मिले जनादेश का सम्मान करती है और वो ना तो दोबारा चुनाव चाहते हैं और न ही किसी प्रकार का संवैधानिक संकट चाहते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी नई सरकार के गठन में बाधा नहीं बनेगी। स्टालिन ने उन अफवाहों को भी खारिज कर दिया कि डीएमके अगली सरकार बनाने के लिए अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कजगम AIADMK से बातचीत कर रही है। पश्चिम बंगाल में नव निर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने कल राज्य सचिवालय नावन्न में वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर समारोह की तैयारियों और चुनाव बाद हिंसा रोकने के उपायों पर चर्चा की। बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और राज्य प्रभारी सुनील बंसल, पार्टी नेता सौमित्र खान और ज्योतिमर्य सिंह महतो भी मौजूद रहे। शमिक भट्टाचार्य ने बताया कि पार्टी के नव निर्वाचित विधायक कल अपने संसदीय दल के नेता का चुनाव करेंगे। शनिवार सुबह 10 होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। उन्होंने कहा कि यदि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देती हैं, तब भी समारोह पूरी तरह संवैधानिक प्रक्रिया के तहत आयोजित किया जाएगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
3: ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया। पाकिस्तानी आक्रामकता

0: को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर के वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है, जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौती का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडर सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैन्य क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिन का सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है, जिससे इसका महत्व और बढ़ गया है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIEC से श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ करेंगे। इस पहल के अंतर्गत मेडिकल कॉलेज तथा अस्पताल में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिक स्वास्थ्य जांच करा सकेंगे। ये पहल नए 4 श्रम संहिताओं के अंतर्गत किए गए सुधारों पर आधारित है, जिनके माध्यम से 29 केंद्रीय श्रम कानूनों को 4 प्रमुख श्रेणियों में समाहित किया गया है। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इन हमलों में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने चंद्रनाथ रथ की हत्या की जांच शुरू कर दी है। पुलिस महानिदेशक सिद्धिनाथ गुप्ता ने बताया कि घटना में इस्तेमाल वाहन बरामद कर लिया गया है। जानकारी के अनुसार हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए थे। इस बीच उत्तर 24 परगना के बसीरहाट में एक अन्य भाजपा कार्यकर्ता रोहित रॉय को भी गोली मारी गई। उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। कांग्रेस, वामपंथी दलों और तृणमूल कांग्रेस ने शुभेंदु अधिकारियों के निजी सहायक की हत्या की कड़ी निंदा की है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा के दौरान आज मुंबई में हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में कई कार्यक्रम में शामिल होंगे।
2: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोक भवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
1: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कल पारामारिबो में सुरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के तहत भारत सुरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास, सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।
3: We have a deep and trusted relationship.
4: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है, क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सुरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
3: In its developmental journey.

0: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: फ्रांस ने होर्मोज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा है कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतालवी और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं जिसका उद्देश्य तनावपूर्ण स्थिति को सामान्य करने के बाद होर्मोज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। हमारे विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी की अगली कड़ी में आज हम प्रख्यात लेखिका शिव शंकरी से बातचीत करेंगे। उन्हें प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
2: I was a Sanskrit student. I was not a Tamil student. So I never knew I can write nice Tamil grammar. My becoming a writer, the most beautiful, significant, meaningful accident in my life. I went from village to know that language, to know the habits, the rituals.
0: ये कार्यक्रम आज सुबह 9:10 पर आकाशवाणी के एफएम गोल्ड चैनल पर प्रसारित होगा। आप इसे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी, जिसमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, मलेशिया, सिंगापुर, स्कॉटलैंड, वेल्स, नाइजीरिया, केन्या, जमैका और त्रिनिदाद तथा टोबैगो जैसे देशों के खिलाड़ी शामिल होंगे। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया है। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के काना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 से खेला जाएगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
3: फरहत पहलगाम आतंकी हमले में निर्दोष लोगों की निर्मम हत्या का बदला लेने के लिए भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के 1 वर्ष पूरे होने पर आज सभी समाचार पत्रों ने सुर्खी बनाई है। हिंदुस्तान लिखता है, शौर्य का 1 वर्ष, जल थल नभ में और सशक्त हुई सेना। दैनिक भास्कर के शब्द हैं, भारत में पहली बार 50,000 जवानों की अलग ड्रोन फोर्स, किसी भी सैन्य हमले में सबसे पहले करेगी प्रहार। पत्र लिखता है, ऑपरेशन सिंदूर का 1 साल, अजय हिंदुस्तान के वो 88 घंटे जब हमारे प्रहार से घुटनों पर आ गया था पाकिस्तान। आज हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय पन्ने पर ऑपरेशन सिंदूर पर लेख प्रकाशित किया है। पत्र लिखता है, आज देश इस सैन्य अभियान की सफलता की वर्षगांठ मना रहा है। इसका संदेश यही है कि भारत के पास अपने हितों की रक्षा करने की क्षमता और इच्छा शक्ति दोनों है। दैनिक जागरण ने अमेरिका ईरान के बीच युद्ध समाप्त होने के बाद शेयर बाजार में तेजी आने का समाचार दिया है। पत्र लिखता है, अमेरिका ईरान वार्ता में प्रगति से बाजार में उछाल, सेंसेक्स 941 अंक चढ़ा, ट्रंप के नरम रुख से क्रूड की कीमतों में आई गिरावट। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत में भारी बारिश, महाराष्ट्र में पारा 43.5 डिग्री के तक पहुंचा, अमर उजाला की सुर्खी है।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह सहित कई गणमान्य व्यक्ति पटना में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता का चुनाव करेंगे। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमान वाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही समाचार प्रभाग
4: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज़।

परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को

0: और बेहतरीन बनाती।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाला जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत के सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और

0: सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में दोपहर 12:10 पर होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछले सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री के पद की शपथ लेने की संभावना है। केरलम के नवनिर्वाचित कांग्रेस विधायक आज तिरुवनंतपुरम में अपने नेता के चयन के लिए बैठक करेंगे। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ के ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 104 सीटें जीती हैं। यूडीएफ नेता राज्यपाल के तिरुवनंतपुरम पहुंचने के बाद उनसे भी मुलाकात करेंगे। पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के सहयोगी चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि बीती रात दोहरिया इलाके में बाइक सवार हमलावरों ने उनकी कार पर अंधाधुंध फायरिंग की। गंभीर हालत में उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इस मामले में उनके ड्राइवर बुद्धदेव बेरा भी घायल हुए हैं और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। उन्हें कोलकाता के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वे इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। फ्रांस ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक इतावली और एक डच युद्धपोत भी है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। ये प्रतियोगिता दिल्ली सरकार और टेबल टेनिस महासंघ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Tanvi Khurana. India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting response to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on 22nd of April last year. Prime Minister Narendra Modi has said that the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said that the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage.

0: आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए। इन हमलों में कम से कम 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब थी। एक रिपोर्ट।
1: ऑपरेशन सिंदूर भारत की सैन्य और रणनीतिक शक्ति का एक महत्वपूर्ण प्रदर्शन था, जिसे सैन्य और गैर सैन्य साधनों के संयोजन से अंजाम दिया गया। इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। इस भारी क्षति से आहत होकर पाकिस्तान को युद्ध विराम का सहारा लेने के लिए विवश होना पड़ा। भारत ने न केवल इस ऑपरेशन को सफलतापूर्वक अंजाम दिया, बल्कि इसने भारतीय वायुसेना, भारतीय सेना और भारतीय नौसेना, इन तीनों बलों के बीच समन्वित कार्रवाई और अपनी सैन्य शक्ति का प्रदर्शन भी किया। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ भारत की दृढ़ प्रतिक्रिया और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा प्रति उसकी अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन ने सशस्त्र बलों की तत्परता और समन्वित शक्ति को भी उजागर किया। श्री मोदी ने कहा कि इस ऑपरेशन ने बलों के बीच बढ़ते जुड़ाव को प्रदर्शित किया और रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में भारत के प्रयासों से राष्ट्रीय सुरक्षा को मिली मजबूती को रेखांकित किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत द्वारा प्राप्त असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो भी साझा किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। भारतीय सेना ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में देश की दृढ़ प्रतिक्रिया पर प्रकाश डाला और देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया।
2: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि देश की सशस्त्र सेनाओं का साहस और समर्पण लगातार राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित कर रहा है। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम 3 दिन की भारत यात्रा पर हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति लाम मुंबई में आज कई अन्य कार्यक्रम में शामिल होंगे।
4: वियतनाम के अध्यक्ष तो लाम का मुंबई का एक दिवसीय दौरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से शुरू होगा, जिसमें अध्यक्ष लाम द्वारा रिंग द बेल सेरेमनी भी शामिल है। इसके बाद वे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। बाद में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम मुख्यमंत्री फडणवीस के साथ भारत वियतनाम व्यापार मंच में भाग लेंगे। इस मंच का आयोजन CII द्वारा और वियतनाम चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के सहयोग से किया जा रहा है। यात्रा के अंतिम चरण में राष्ट्राध्यक्ष तो लाम लोकभवन में महाराष्ट्र के राज्यपाल से मुलाकात करेंगे। वियतनाम के राष्ट्राध्यक्ष की भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई की यात्रा दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक और आर्थिक सहयोग के परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण है। संगीता गोडबोले, आकाशवाणी न्यूज, मुंबई।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने सूरीनाम के विदेश मंत्री मेलविन बाउवा के साथ द्विपक्षीय बातचीत की है। दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडलों ने 9वीं संयुक्त आयोग बैठक के अंतर्गत भारत सूरीनाम संबंधों की व्यापक समीक्षा की। बातचीत में व्यापार, निवेश, रक्षा, ऊर्जा, विकास सहयोग, स्वास्थ्य, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच आपसी संपर्क जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों के रिश्ते मजबूत, जन समुदाय जुड़ाव की नींव पर टिके हैं और दोनों देश इन्हें और मजबूत बनाने के लिए काम

0: कर रहे हैं।
1: We have a deep and trusted relationship.
2: हमारा रिश्ता गहरा और भरोसेमंद है क्योंकि यह लोगों के बीच मजबूत जुड़ाव की नींव पर टिका है। भारत इस बात की सराहना करता है कि सूरीनाम आज अपनी विकास यात्रा में बड़े कदम आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।
1: In its developmental journey.
0: विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AI

0: बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिनों की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। ईरान ने कहा है कि वो इस प्रस्ताव की समीक्षा कर रहा है। वहीं अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्थिति को नियंत्रण में बताया, लेकिन चेतावनी दी कि बातचीत असफल होने पर सैन्य कार्रवाई फिर शुरू हो सकती है। इधर इसराइल के प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं और हालात पर नजर बनाए हुए हैं। एक रिपोर्ट।
1: ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर नौसेना ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित मार्ग नई प्रक्रियाओं के तहत संभव है, हालांकि उसने इसका विस्तृत विवरण नहीं दिया। इस बीच अमेरिका की केंद्रीय कमान ने कहा है कि उसने ओमान की खाड़ी में एक ईरानी ध्वज वाले तेल टैंकर को निष्क्रिय कर दिया है, जिसने जारी अमेरिका नाकाबंदी की अवहेलना करते हुए एक ईरानी बंदरगाह की ओर जाने का प्रयास किया था। लेबनान में इजरायली सेना ने बेरूत में एक लक्ष्य पर हमला किया, जिसके बारे में माना जाता है कि वह हिजबुल्ला के कुलीन रादवान बल से जुड़ा हुआ था। इजरायली अधिकारियों का कहना है कि लक्ष्य व्यक्ति इजरायली सैनिकों और नागरिक क्षेत्रों पर हमलों के लिए जिम्मेदार था। हिजबुल्ला ने जवाबी कार्रवाई का दावा करते हुए इजरायली ठिकानों पर हमले और इजरायली बलों के हताहत होने की सूचना दी है। ये घटनाक्रम नाजुक सुरक्षा वातावरण को रेखांकित करते हैं, जबकि वार्ता जारी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
0: पश्चिम एशिया में तनाव के बीच अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में ईरानी झंडे वाले एक तेल टैंकर को रोकने और उसे निष्क्रिय करने का दावा किया है। अमेरिकी सेना के अनुसार एमटी हसना नाम का ये टैंकर अमेरिकी समुद्री नाकेबंदी तोड़कर ईरानी बंदरगाह की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहा था। फ्रांस ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के संभावित अभियान के तहत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया है। एक बयान में फ्रांसीसी सेना ने कहा कि चार्ल्स डी गॉल विमानवाहक पोत समूह, जिसके साथ एक तालवी और एक डच युद्धपोत भी शामिल है, दक्षिणी लाल सागर की ओर अग्रसर है। फ्रांस और ब्रिटेन कई हफ्तों से एक प्रस्ताव पर काम कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य स्थिति स्थिर होने या संघर्ष के समाधान के बाद हुर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित आवागमन की नींव रखना है। दिल्ली में राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन किया जाएगा। ये प्रतियोगिता 27 जुलाई से 2 अगस्त तक त्यागराज स्टेडियम में खेली जाएगी। इसमें 35 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद ने पंजाब किंग्स को 33 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश आज पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम आज मुंबई में भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करेंगे। अमेरिका और ईरान पश्चिम एशिया संघर्ष समाप्त करने के लिए समझौते के करीब। फ्रांस ने हुर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित करने के अंतर्गत अपने विमानवाहक पोत समूह को लाल सागर में तैनात किया। और दिल्ली राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: गुड मॉर्निंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम तन्वी खुराना विद द वर्ल्ड न्यूज। The headlines. India marks first anniversary of Operation Sindoor, launched in response to Pahalgam terror attack. Vietnam President Tu Lam to address India-Vietnam Business Forum in Mumbai today. US and Iran closing in on agreement to end war in West Asia. France moves its carrier strike group to Red Sea as part of potential mission to secure Strait of Hormuz. And Delhi to host 2026 Commonwealth Table Tennis Championship. India marks the first anniversary of Operation Sindoor today. It was on May 7th last year, India launched Operation Sindoor, carrying out airstrikes on 9 terror infrastructures in Pakistan and Pakistan-occupied Kashmir, eliminating at least 100 terrorists. It was India's befitting reply to the barbaric Pakistan-sponsored terrorist attack on the tourists in Pahalgam on 22nd of April last year. Today, we look at New Delhi's demonstration of zero terror policy towards terrorism.
3: Operation Sindoor was a significant demonstration of India's military and strategic power executed through a combination of military and non-military means. This multidimensional operation effectively neutralized

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। इन हमलों में 100 आतंकी मारे गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। ऑपरेशन सिंदूर के एक वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने इस ऑपरेशन के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि

0: सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। प्रधानमंत्री ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य को सम्मान देने के लिए अपने सोशल मीडिया अकाउंट प्रोफाइल पिक्चर बदल दी है। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में गृहमंत्री ने कहा कि देश के खिलाफ आतंकवाद के हर स्वरूप का मुकाबला डटकर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ये दिन हमारे दुश्मनों को ये संदेश देता है कि वे दुनिया में कहीं भी छिपे हों, वे हमसे बच नहीं सकते। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सेनाओं की कार्रवाई ने सटीक रणनीति, तीनों सेनाओं के बेहतरीन तालमेल और समन्वय का उत्कृष्ट उदाहरण पेश किया, जो आधुनिक सैन्य अभियानों के लिए एक नई मिसाल है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है। इस वीडियो में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित, सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। राज्यपाल के चेन्नई से तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लिकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम करने को लेकर बातचीत आगे बढ़ रही है। क्षेत्रीय सूत्रों के मुताबिक एक प्रारंभिक समझौते का मसौदा तैयार किया जा रहा है, जिस पर दोनों पक्ष चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि 14 बिंदुओं वाला ये मसौदा 30 दिन की बातचीत का रास्ता खोल सकता है, ताकि एक व्यापक समझौते तक पहुंचा जा सके। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला पंजाब किंग्स से होगा। हैदराबाद में ये मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली कैपिटल्स को 8 विकेट से हरा दिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सुनील वर्मा। As Operation Sindoor completes 1 year today, Prime Minister Narendra Modi has changed his display picture on social media to honor the valor of the Indian Armed Forces. He has also urged the countrymen to change display pictures on all social media handles as a mark of respect to our forces and their success during Operation Sindoor. Along with the Prime Minister, his cabinet colleagues have also changed their display pictures across all social media handles. The picture has a black background with the words Operation Sindoor and the national flag on top of it. During Operation Sindoor, armed forces showcased unparalleled courage, precision and resolve. Every citizen of the country takes pride in their indomitable courage, unwavering resolve and dedication to duty. The Indian Army today shared a video marking a year of Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted the country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding the country's sovereignty and the citizens.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: Defense Minister Rajnath Singh has hailed the valor and sacrifices of the Indian Armed Forces on the anniversary of Operation Sindoor. In a social media post, the Defense Minister underlined that the courage and dedication of the country's armed forces continue to safeguard the nation. He added that their actions during the operation reflected unmatched precision, seamless jointness, and deep synergy across services, setting a benchmark for modern military operations. Union Home Minister Amit Shah has said that Operation Sindoor stands as an epochal mission of India that will always remind the country's enemies of the infallible striking power of the armed forces. In a social media post marking 1 year of Operation Sindoor, Mr. Shah saluted the unparalleled valor of the country's forces. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary will expand his cabinet today. BJP State President Sanjay Saraogi informed that Prime Minister Narendra Modi, Union Home Minister Amit Shah, BJP National President Nitin Naveen, along with several NDA senior leaders, will attend the swearing-in ceremony to be held at Gandhi Maidan in Patna. Congress Party in Kerala is continuing the discussions at Thiruvananthapuram to form the new government in Kerala. Congress-led UDF, which secured 102 out of 140 assembly seats in the state, will approach the governor once he reaches Thiruvananthapuram from Chennai. Kerala Governor Rajendra Vishwanath Arlekar, who is also holding the additional charge of Tamil Nadu, is in Chennai now. In Tamil Nadu, DMK Chief M.K. Stalin has said that his party respects the people's mandate for a new party assuming power in the state and he does not want another election or a constitutional crisis. He also said that his party will not stay in the way for the formation of a new government. Mr. Stalin also rejected the rumours that DMK is in talks with AIADMK to form the next government. Delhi will host Commonwealth Table Tennis Championship 2026 at the Tyagaraj Stadium with players from more than 35 countries expected to participate. Jointly organised by Delhi Government and Table Tennis Federation of India, the championship will be held from July the 27th to August the 2nd. Chief Minister Rekha Gupta announced that Delhi has a long legacy of hosting international sporting events and the championship will further strengthen the city's position on the global sporting map. And in IPL cricket today, Lucknow Super Giants will face Royal Challengers Bengaluru at Bharat Ratna Shri Atal Bihari Vajpayee Ikana Cricket Stadium, Lucknow. The match will start at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.

0: बीते हुए पल लेके आए हैं यादों की बारात। आप सुन रहे हैं लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर। लो आ गई उनकी याद, लो आ गई उनकी याद 100.1 FM गोल्ड पर।
1: सुप्रभात, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि 11:10 से आपके लिए रहता है कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद, और हर रोज एक अलग अलग विषय पर हम कार्यक्रम लेकर आते हैं। तो आज आपकी आरजे फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत सबसे पहले तो आपका स्वागत करती है, और स्वागत करने के साथ साथ ये भी बता दूं कि आज जिस विषय पर मैं प्रोग्राम सजा के लाई हूं वो कुछ इस तरीके से है कि बॉलीवुड फिल्म में स्क्रीन पर पियानो बजाते हुए हीरो हीरोइन को जो दिखाया जाता था, खास करके 1950 से 1970 के दशक की जो सबसे प्रमुख ट्रोप्स या रूढ़ियों में से एक था, तो आज वही गाने सुनेंगे जिसमें ऑन स्क्रीन कोई हीरो या हीरोइन गाना गाते हुए पियानो बजाते हुए दिखे हैं। तो शुरुआत करना चाहूंगी फिल्म

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

ऐसा है दोस्तों कि आज जिस विषय पे मैं गाने आपको आपके लिए लेकर आई हूँ आपके फुल टू इंफोटेनमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, वो कुछ ऐसे गाने हैं जो हीरो या हीरोइन ऑन स्क्रीन गाने के साथ जो है वो पियानो बजा रहे हों। तो आपको बता दूं कि बॉलीवुड में जो ये ट्रेंड था, सबसे ज़्यादा जो है पियानो बजाते हुए हीरो हीरोइन को गाने में दिखाया जाता था 1950 से लेके 1970 तक, लेकिन ये सिलसिला आगे भी जारी रहा। इसका

बॉलीवुड और दर्शकों पर गहरा सांस्कृतिक, भावनात्मक और दृश्य प्रभाव पड़ा। बॉलीवुड में पियानो दृश्यों का प्रभाव जो है रोमांस और इमोशन की भाषा। पियानो गीतों का मुख्य उद्देश्य भावनाओं को व्यक्त करना था, जैसे कि अभी आपके लिए मैं प्ले करूंगी फिल्म अनुपमा से लता मंगेशकर की आवाज में वो गाना धीरे धीरे मचल है हवा। कैफी आजमी ने इसे

धीरे धीरे मचल ए दिले बेकरार, ये गाना फिल्म अनुपमा फिल्म रिलीज हुई थी 1966 में। शर्मिला टैगोर पियानो बजाते हुए अपने पति तरुण बोस का इंतजार करती है। और अगला गीत फिल्म वक्त से, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1965 में। गीत के बोल हैं, चेहरे पे खुशी छा जाती है। साधना इस गाने में पियानो बजाते हुए सुनील दत्त के लिए अपने प्यार का इजहार करती है।

अगला गीत फिल्म शगुन से, ये फिल्म रिलीज हुई थी 1964 में, और अगला गाना जो आप सुनेंगे तुम अपना रंजो गम, इस गाने को गाते हुए वहीदा रहमान ऑन स्क्रीन पियानो बजाते हुए नजर आई थी। तो चलिए आपको सुनवाती हूँ वो गीत जगजीत कौर की आवाज में।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

अगला गीत मैं आपको सुनवाना चाहूंगी फिल्म ब्रह्मचारी से। ये फिल्म रिलीज हुई थी 1968 में और जो गीत है उसके बोल है, दिल के झरोखों में तुझको बिठाकर शमी कपूर पियानो बजाते हुए राजश्री के लिए ये गाना गाते हैं। तो चलिए सुनते हैं इस गीत को शहनशाह तरन्नुम मोहम्मद रफी और साथियों की आवाज में। इस गीत को बड़े खूबसूरती से कलमबद्ध किया हसरत जयपुरी ने और संगीत से सवारा शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे कार्यक्रम लो आगे उनकी याद 100.1 FM गोल्ड आकाशवाणी कोलकाता के खरा सोना वाले चैनल पर। और आपके साथ इस कार्यक्रम में है आपकी आज ही दोस्त लक्षा पर्वत। और आज हम वो सारे गाने आपके लिए प्ले कर रहे हैं, सारे तो नहीं लेकिन कुछ एकाद तो जरूर प्ले कर पाऊंगी और कर रही हूं, जो कि ऑन स्क्रीन आपने देखा है कि हीरो हो या हीरोइन गाना गाते हैं लेकिन साथ में पियानो भी बजाते हैं या प्ले कर रहे हैं कह सकते हैं। और फिलहाल इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अगला गीत मैं आपको सुनाना चाहूंगी उस फिल्म से जो रिलीज हुई थी 1966 में, दुल्हन एक रात की। लता मंगेशकर की आवाज में इस गीत को सुनेंगे। राजा मेहंदी अली खान ने इस गीत को कलमबद्ध किया है और मदन मोहन का संगीत।

मौसम संबंधी सूचना। मध्यम गरज के साथ बारिश और बिजली कड़कने के साथ तेज बारिश और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से तेज हवा चलेगी अगले 2-3 घंटे में। 11 बजे से 7/5/2026 से साउथ 24 परगना, नॉर्थ 24 परगना, कोलकाता जिले के कुछ हिस्सों पर इसका असर पड़ने का बहुत संभावना है। मौसम संबंधी सूचना समाप्त हुई।

आप सुन रहे हैं आकाशवाणी कोलकाता 100.1 एफएम गोल्ड खरा सोना पर आपका ही पसंदीदा कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद और इस सफर में आपके साथ है आपकी आज फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत और आज मैं वो सारे गाने आपके लिए प्ले कर रही हूं जहां तक हो सकेगा जो कि ऑन स्क्रीन आपने देखा है हीरो या हीरोइन गाना गा रहे हैं और साथ में पियानो भी बजा रहे हैं। तो इसी क्रम में अगला गाना फिल्म गुमराह से चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए। साहिर ने इसे कलमबद्ध किया है और रवि ने संगीतबद्ध किया है। फिल्म का नाम गुमराह और इस गीत को सुनेंगे महेंद्र कपूर की आवाज में।

एक फिल्म रिलीज हुई थी जिसका नाम था बड़े दिल वाला, और आपको बता दूं कि ये फिल्म रिलीज हुई थी 1982 में। तो आपको याद आ ही रहा होगा वो गाना जिसे कलमबद्ध किया था मजरू सुल्तानपुरी ने और संगीत से सवार था आरडी बर्मन ने, और गीत के बोल क्या थे, जीवन के दिन छोटे सही पर हम भी बड़े दिल वाले। इस गीत को किशोर कुमार की आवाज में सुने, और फिल्म में ये गाना जो है ऋषि कपूर जो है पियानो बजाते हैं और गाना गाते हैं। वैसे बता दूं कि ये गाना दो बार दिखाया गया था पियानो पर, एक बार प्राण जो है वो भी पियानो बजाते हुए ये गाना गाते हैं अपने बच्चों के लिए।

चलिए दोस्तों, अगला गीत आपको सुनाना चाहूंगी फिल्म साजन से, और ये गाना आप सुनेंगे अनुराधा पौडवाल की आवाज में, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। इस गाने में माधुरी दीक्षित जो है वो पियानो बजाती हैं और गाना गाती हैं। ऑन स्क्रीन ये देखा गया

स्टूडियो की घड़ी में समय हो चला है 11:55:30, यानी कि थोड़ी ही देर में मुझे आज कार्यक्रम लो आ गई उनकी याद को विराम देना पड़ेगा और 12 बजे से लेकर 12:20 तक आकाशवाणी कोलकाता के संजयिता चैनल पर लेकर आऊंगी कार्यक्रम सुरभि। लेकिन फिलहाल चलते चलते एक बेहद खूबसूरत गीत, एक और गीत आपके लिए प्ले करूंगी और वो जिस फिल्म से मैंने लिया है, फिल्म का नाम है 3 देवियां, ख्वाब हो तुम या कोई हकीकत। किशोर कुमार और साथियों की आवाज में इस गीत को सुनेंगे, गीतकार मजरू सुल्तानपुरी, संगीतकार SD बर्मन और इस गीत में देवानंद जो है गाना गाते हैं और पियानो बजाते हैं। इस गीत को सुनते सुनते आज्ञा दीजिए अपनी आरजी फ्रेंड सुलक्षणा पर्वत को, फिर किसी रोज किसी कार्यक्रम में आपसे जरूर मुलाकात होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और चारों तरफ खुशियां बिखेरते रहिए। आपका दिन मंगलमय हो।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
1: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता और नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश आतंकवाद और उसको समर्थन देने वालों को समाप्त करने के अपने संकल्प पर अडिग है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। भारतीय सेना ने आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर एक वीडियो जारी किया है।

0: घाटियों में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ भारत की सुनियोजित सटीक और प्रभावी कार्रवाई को दर्शाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान आज जयपुर में संयुक्त कमांडरों के सम्मेलन के दूसरे संस्करण में शामिल होंगे। रक्षा मंत्रालय के अनुसार नए क्षेत्रों में सैनिक क्षमता विषय पर आयोजित ये दो दिवसीय सम्मेलन ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के अवसर पर आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन में साइबर, अंतरिक्ष और मनोवैज्ञानिक युद्ध जैसे उभरते क्षेत्रों की चुनौतियों पर चर्चा होगी। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे सब कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता पटना के गांधी मैदान में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार पिछली सरकार द्वारा अपनाए गए फॉर्मूले के आधार पर किया जा रहा है। भाजपा के लगभग 15 और जेडीयू के 14 विधायकों के मंत्री पद की शपथ लेने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है, वे इस समय चेन्नई में हैं। प्रवर्तन निदेशालय पंजाब के मोहाली और चंडीगढ़ में 12 स्थानों पर तलाशी अभियान चला रहा है। ये कार्रवाई ग्रेटर मोहाली क्षेत्र विकास प्राधिकरण GMADA से भूमि उपयोग परिवर्तन लाइसेंस प्राप्त करने में हुई धोखाधड़ी और जनता से करोड़ों रुपए की ठगी के सिलसिले में की जा रही है। निदेशालय नितिन गोहल की तलाश कर रही है। अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमेरिकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज शुरुआती कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valour. President Draupadi Murmu has called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism and all forces that threaten our sovereignty and the safety of citizens. In a social media post, she said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength. The Indian Army today shared a video marking a year of Operation Sindoor, India's calibrated and precise response to Pakistan-sponsored terrorism. In a social media post, the Indian Army highlighted the country's resolute response and reaffirmed its commitment to safeguarding the country's sovereignty and its citizens.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकता। टेरर

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: কৃষি কমিটি সিঙ্গুরে কারখানা গড়তে না পারার জন্য রাজ্য সরকারকে 765.78 কোটি টাকা ক্ষতিপূরণ বাবদ টাটাদের মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয়। বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরী আজ তার মন্ত্রিসভা সম্প্রসারণ করবেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ এবং এনডিএ বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ নেতাই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন। অনুষ্ঠানটি আজ দুপুর 12:10 পাটনার গান্ধী ময়দানে অনুষ্ঠিত হয়েছে। সূত্রের খবর, বিজেপি থেকে প্রায় 15 জন এবং জেডিইউ থেকে 14 জন বিধায়ক মন্ত্রী হিসেবে শপথ গ্রহণ করবেন। এছাড়া লোক জনশক্তি পার্টি থেকে 2 জন প্রতিনিধি এবং হিন্দুস্তানি আওয়াম মোর্চা ও রাষ্ট্রীয় লোক মোর্চা থেকে 1 জন করে প্রতিনিধি মন্ত্রিসভায় অন্তর্ভুক্ত হতে পারেন। বিজেপি ও জেডিইউ এর ক্ষেত্রে পুরনো পরিচিত মুখের ওপরই বেশি ভরসা রাখা হচ্ছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। জেডিইউ নিশান্ত কুমারের নাম নিয়েও আলোচনা হচ্ছে বলে খবর। আজকের প্রসঙ্গে এবারের বিষয়ে নতুন সরকারের কাছে সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। আগামী 9ই মে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান। নতুন সরকার গঠনের আগে সাধারণ মানুষ কি চাইছে তা জানতে চেষ্টা করছে আমাদের প্রতিনিধিরা। আকাশবাণীর সংবাদ বিভাগ প্রযোজিত অনুষ্ঠানটি শুনবেন আজ রাত 8:00 গীতাঞ্জলি ডিটিএইচ বাংলা এবং আকাশবাণী সংবাদ কলকাতা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে। আইপিএলের একানা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে আজ লখনৌ সুপার জায়ান্টস রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে খেলবে। খেলা শুরু হবে সন্ধ্যা 7:30। 9 ম্যাচে 12 পয়েন্ট নিয়ে বেঙ্গালুরু লীগ তালিকায় দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। সমসংখ্যক ম্যাচে 4 পয়েন্ট সংগ্রহ করে লখনৌ 10 দলের পয়েন্ট তালিকায় সবশেষে রয়েছে। শেষ করার আগে খবরের বিশেষ কিছু অংশ আর একবার। সারা দেশ জুড়ে আজ অপারেশন সিন্ধুরের প্রথম বার্ষিকী উদযাপিত হচ্ছে। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং প্রতিরক্ষামন্ত্রী এই উপলক্ষে সশস্ত্র বাহিনীর সাহসিকতার প্রশংসা করে তাদের অভিবাদন জানিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান সরকারের মেয়াদ আজ শেষ হচ্ছে। 25শে বৈশাখ শনিবার রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কলকাতায় নবনির্বাচিত বিজেপি সরকার শপথ গ্রহণ করবে। অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী সহ বিজেপি শাসিত একাধিক রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী উপস্থিত থাকবেন। খবর এখনকার মতো এ পর্যন্তই। এর পরের খবর শুনুন 1:30।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। देश आज ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ मना रहा है। पिछले वर्ष 7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था, जिसके तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकियों के 9 ठिकानों पर हवाई हमले किए गए थे। ये कार्रवाई पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पहलगाम में पर्यटकों पर हुए पाकिस्तान प्रायोजित बर्बर आतंकी हमले का भारत की ओर से करारा जवाब था। एक रिपोर्ट।
2: इस बहुआयामी अभियान ने आतंकवादी खतरों को प्रभावी ढंग से निष्क्रिय कर दिया, पाकिस्तानी आक्रामकता को रोका और आतंकवाद के प्रति भारत की शून्य सहिष्णुता नीति को दृढ़ता से लागू किया। इस अभियान का उद्देश्य आतंकवाद के अपराधियों और योजनाकारों को दंडित करना और सीमा पार आतंकी ढांचे को नष्ट करना था। इस अभियान के परिणाम स्वरूप 9 प्रमुख आतंकी शिविरों का विनाश, 11 पाकिस्तानी हवाई अड्डों पर हमला और कई प्रमुख आतंकवादियों का खात्मा हुआ। भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। गृहमंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने पटना के गांधी मैदान में नवनियुक्त मंत्रियों को शपथ दिलाई। इसमें श्रवण कुमार, विजय कुमार सिन्हा, दिलीप कुमार जायसवाल, निशांत कुमार और लेसी सिंह सहित कई अन्य मंत्रियों ने शपथ ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और एनडीए के कई वरिष्ठ नेता शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना में रोड शो कर रहे हैं। पुदुच्चेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल

0: पाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। कलवी विजय ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और पार्टी विधायकों की सूची तथा कांग्रेस का समर्थन पत्र प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसीके नेता थिरुमावलन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के दो विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरलम में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे कभी तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे नहीं झुके। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। ये पहल व्यावसायिक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और देश के कार्यबल के लिए व्यापक स्वास्थ्य सेवा तक पहुँच सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज मुंबई स्थित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का दौरा किया। राष्ट्रपति तो लाम आज महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात करेंगे। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग आधा प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 345 अंक बढ़कर 78,304 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त।
1: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. Prime Minister Narendra Modi has said the country remains steadfast in its resolve to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. In a social media post on the completion of 1 year of Operation Sindoor, Mr. Modi said the Indian Armed Forces had displayed unparalleled courage, precision and resolve during the operation. He said the forces gave a fitting response to those who dared to attack innocent Indians at Pahalgam. Mr. Modi also added that the entire nation salutes the armed forces for their valor.
2: India will identify, track and punish every terrorist and their backer.
3: Terror or talk ek saath nahi ho sakta. Terror or trade एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
1: President Draupadi Murmu and Vice President C.P. Radhakrishnan have called Operation Sindoor a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. In a social media post, President Murmu said the brutal attack at Pahalgam was met with befitting and exemplary precision. She reiterated that those who seek to threaten Bharat must know that our nation stands vigilant, united and prepared to respond with strength. Marking 1 year of Operation Sindoor, the Vice President in a social media post said the unwavering courage and valour of our armed forces ensured that terror networks were effectively targeted and dismantled. In Tamil Nadu, TVK Chief C. Joseph Vijay met Governor Vishwanath Arlekar for the second time at the Lok Bhavan today. It is said the governor had called him. The governor is also likely to depart for Kerala after the meeting with him. Yesterday as well, Vijay met the governor and presented the list of the party MLAs and also the support letter from the Congress. At this juncture, he needed more support to show a majority. VCK leader Thiruvallavan has said that his party would decide on supporting Vijay after the Legislative Party meeting today. His party has two MLAs. The left parties have also appealed to the governor to give the opportunity to form the government to the single largest party, TVK. It stated that the majority could be proved on the floor of the assembly.

0: isolated places over Kerala, Mahe, South Interior, Karnataka, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department said thunderstorms accompanied by lightning and gusty winds are expected over Uttar Pradesh, Andhra Pradesh, Bihar, Chhattisgarh and Goa till tomorrow. Similar conditions will also prevail over Madhya Maharashtra, Madhya Pradesh, Marathwada, Andaman and Nicobar Islands and northeastern states of the country tomorrow. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi hails first anniversary of Operation Sindoor, reaffirms India's commitment to defeat terrorism and dismantle its enabling ecosystem. Bihar Chief Minister Samrat Chaudhary expands his cabinet. 32 ministers, including Nitish Kumar's son, take oath as new ministers. Hectic parley is underway to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Government launches nationwide annual health checkup initiative for workers aged 40 years and above. And in IPL cricket, Lucknow Super Giants to face Royal Challengers Bengaluru in Lucknow this evening. For details of these stories and more, log on to our website www.newsonair.gov.in and News on AIR app. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता को दोहराया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों ने पहलगाम में निर्दोष नागरिकों पर हमला करने वालों को मुंहतोड़ जवाब दिया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की।
2: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का एक निर्णायक प्रमाण बताया है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने ऑपरेशन सिंदूर को एक निर्णायक क्षण बताया जब भारत ने शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया। गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। गृह मंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इतिहास में इस दिन को भारतीय सशस्त्र सेना की ताकत और उसके सटीक निशाना लगाने की क्षमता तथा देश की खुफिया एजेंसियों की सूझबूझ के लिए जाना जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर राष्ट्रीय संकल्प और तैयारी का मजबूत प्रतीक है जो दिखाता है कि भारतीय सशस्त्र बल हर चुनौतियों का निर्णायक जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है।
1: भारतीय सशस्त्र बलों ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर ने अपने उद्देश्यों को सफलतापूर्वक हासिल किया है। इस अभियान में सेना, नौसेना और वायुसेना के बीच उत्कृष्ट समन्वय का प्रदर्शन किया गया ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर आज जयपुर में भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडरों का संयुक्त संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया गया। इस दौरान लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई ने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ भारत का अभियान दृढ़ संकल्प के साथ जारी है। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया है कि आत्मनिर्भर भारत का सपना अब सिर्फ एक नारा मात्र नहीं रह गया है। श्री घई ने बताया कि भारत

0: उड़न ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारी सशस्त्र सेनाओं की सफलता और उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने के लिए देशवासियों से भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर प्रोफाइल पिक्चर बदलने की अपील की है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज कुमार सिन्हा ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत के सशस्त्र बल देश की संप्रभुता और अखंडता की रक्षा हर कीमत पर करेंगे। उपराज्यपाल ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों को श्रद्धांजलि अर्पित की। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा में भी पहलगाम आतंकी हमले में मारे गए लोगों के लिए विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में महिलाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देशभक्ति दर्शाने वाली रंगोली बनाई। देशभक्ति के विषयों और राष्ट्रीय प्रतीकों से सजी इन रंगोलियों को एक सामुदायिक कार्यक्रम में प्रदर्शित किया गया। इसमें स्थानीय निवासी और महिला प्रतिभागी शामिल थीं। आज के ही दिन भारतीय सशस्त्र बलों ने अत्याधुनिक मिसाइलों, ड्रोन तकनीक और सटीक खुफिया जानकारी का उपयोग करके ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
2: विनय न मानत जलधि जड़, गए तीन दिन बीते, बोले राम सकोप तब, भय बिनु होए ना प्रीति। जी श्रोताओं, बिल्कुल ठीक ही कहा गया है कि भय के बिना प्रीति संभव नहीं होती। ठीक कुछ ऐसा ही हुआ भारतीय सशस्त्र बलों के अद्भुत साहस और शौर्य के प्रतिमान ऑपरेशन सिंदूर में, जब भारतीय सैन्य बलों के रणबांकुरों ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में आतंकवादी ठिकानों और आतंकी नेटवर्क की जड़ों को हिलाने वाली सटीक और निर्णायक कार्रवाई की। पिछले वर्ष 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। इस अभियान में करीब 100 आतंकवादी मारे गए थे। सिंदूर नाम अपने आप में प्रतीकात्मक है। भारतीय संस्कृति में सिंदूर सम्मान, सुरक्षा और अस्मिता का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए इस अभियान का नाम ऑपरेशन सिंदूर रखा गया। ऑपरेशन सिंदूर ने भारत की सैन्य क्षमता, तकनीकी दक्षता और त्वरित निर्णय क्षमता को प्रदर्शित किया। ये अभियान भारतीय सशस्त्र बलों के साहस, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण है। तस्मात् मुतिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुण, भुजंगक्ष्व राज्यम समृद्धम, मये वेते निहता पूर्वमेव निमित्त मात्रम, भव सव्य साचिन।
1: कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जेडीयू के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिन्दुस्तानी अवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से एक एक मंत्री है। मंत्रियों ने पहले 5-5 के समूह में और फिर 6-6 के समूह में शपथ ली। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। जेडीयू के कुल 15 मंत्री हैं, जिनमें से 13 ने आज गांधी मैदान में शपथ ली। श्री विजय कुमार चौधरी और बिजेंद्र प्रसाद यादव ने अप्रैल में सम्राट चौधरी के साथ शपथ ली थी और उन्हें उप मुख्यमंत्री नामित किया गया था। 243 सदस्यीय विधानसभा में 89 विधायकों के साथ भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह, अमित शाह और जेपी नड्डा समेत केंद्रीय मंत्रिमंडल के कई अन्य सदस्य शपथ ग्रहण समारोह में उपस्थित थे। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी है। तमिलनाडु में टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय ने आज लोकभवन में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से दूसरी बार मुलाकात की। बताया जा रहा है कि राज्यपाल ने उन्हें बुलाया था। श्री विजय ने आज राज्यपाल से मुलाकात की। कल उन्होंने पार्टी विधायकों की सूची और कांग्रेस का समर्थन पत्र राज्यपाल को प्रस्तुत किया था। इस समय उन्हें बहुमत दिखाने के लिए और अधिक समर्थन की आवश्यकता है। वीसी के नेता थिरुमावलवन ने कहा है कि उनकी पार्टी आज विधानसभा की बैठक के बाद श्री विजय को समर्थन देने पर फैसला करेगी। उनकी पार्टी के 2 विधायक हैं। वामदलों ने भी राज्यपाल से अपील की है कि वे सबसे

0: बड़ी पार्टी टीवीके को सरकार बनाने का अवसर दें। कांग्रेस पार्टी केरल में नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। उनके पास तमिलनाडु का अतिरिक्त प्रभार भी है। वे इस समय चेन्नई में है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कांग्रेस सूत्रों ने बताया कि केरलम में नए मुख्यमंत्री का नाम पार्टी आलाकमान तय करेगी। हालांकि आज तिरुवनंतपुरम में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई, लेकिन इसमें मुख्यमंत्री के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया गया। कांग्रेस के पर्यवेक्षक नवनिर्वाचित सदस्यों के साथ व्यक्तिगत बैठकें कर रहे हैं। पर्यवेक्षकों का उद्देश्य सभी नवनिर्वाचित सदस्यों के विचारों को जानना और उनकी मंशा को दल के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचाना है। राज्य में मौजूदा हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री का नाम रविवार तक तय होने की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पुलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं पायल शर्मा।
0: पुदुचेरी के मुख्यमंत्री एन रंगासामी ने आज उपराज्यपाल के कैलाश नाथन को अपना इस्तीफा सौंप दिया। इससे केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री ने राजनिवास में उपराज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। एक रिपोर्ट।
2: बंगाल के नया मुख्यमंत्री कौन होंगे, इसको लेकर चल रहे अकालों पे विराम लग सकता है। उस दिन शाम 4 बजे न्यू टाउन के विश्व बांग्ला कॉन्वेंशन सेंटर में बीजेपी विधानमंडल दल की पहली बैठक बुलाया गया है। उसी बैठक में औपचारिक रूप से विधानमंडल दल की नेता का चयन हो सकता है, अर्थात बंगाल का नया मुख्यमंत्री के ताज किसके सर सजेगा, इसके संकेत इस हाई प्रोफाइल मीटिंग से मिल सकता है। राजनीतिक महल की नजर एक और बात पर भी टिकी हुई है। बीजेपी विधानमंडल दल के नेता के चयन के लिए इस बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कलकत्ते में मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेतृत्व चाहते हैं कि नेता के चयन सर्वसम्मति से हो, साथ ही सरकार गठन के पहले विधायकों को एकजुट रखने का संदेश भी देना चाहते हैं दल। आकाशवाणी के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य।
0: शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस सरकार द्वारा फैलाई गई हिंसा की राजनीति का एक और भयावह उदाहरण है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री प्रधान ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थकों को बार बार निशाना बनाया गया है, उन पर हमले किए गए हैं और उनकी हत्या की गई है, क्योंकि वे तृणमूल सरकार की भय की राजनीति के आगे कभी नहीं झुके। इस बीच पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में राज्य पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने 7 सदस्य विशेष जांच दल का भी गठन किया है। कल रात हमलावरों ने चंद्रनाथ रथ की गोली मारकर हत्या कर दी थी। असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुदुचेरी तथा अन्य राज्यों में विधानसभा उपचुनाव के दौरान लागू आचार संहिता को हटा दिया गया है। आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के फलता विधानसभा क्षेत्र में फिर से मतदान होने के कारण वहां आचार संहिता लागू रहेगी। फलता में मतदान 21 मई को और मतगणना 24 मई को होगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल XH या YR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नए श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
3: आज से एक दशक पहले देश में केवल 30 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी का कवरेज मिलता था, लेकिन 12 साल के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर जनरल ने अनाउंसमेंट करा कि भारत में सोशल सिक्योरिटी कवरेज बढ़ के मोदी गवर्नमेंट के प्रयासों से आज देश में 94 करोड़ लोगों को सोशल सिक्योरिटी की कवरेज मिल रहा है।
0: अमेरिका ने होर्मुज जलडमरू मध्य से वाणिज्यिक जहाजों की सुरक्षित निकासी के लिए चलाए गए अभियान प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक

दिया है। सऊदी अरब ने इस अभियान में शामिल अमरीकी विमानों को अनुमति नहीं दी है। आईपीएल क्रिकेट में आज लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। हैदराबाद में यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। नीतीश कुमार के पुत्र सहित 32 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए सघन वार्ताओं का दौर जारी। सरकार ने 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच शुरू की। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी सोना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: किछु गान किछु कथा आपने सुनछेन सुरेला सफर 100.1 FM गोल्डे। সুরেলা সফর, সুরেলা সফর, সুরেলা সফরে আজ ম্যাটিনি মেগাস্টার।

પ્રિયંકા અરોરા. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है. उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई. सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया. अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की. राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी गुटों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया. बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया. पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं. तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है. राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वेत्रिकड़गम टीवी के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया. लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है. उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है. कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं. केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा. पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं. इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है. आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था. 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे. निर्वाचन आयोग ने 4 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में संपन्न विधानसभा चुनावों और अन्य राज्यों के उपचुनावों से 1,400 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध धनराशि जब्त की है. इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में 2021 के चुनावों की तुलना में 40% से अधिक जब्ती हुई है. पश्चिम बंगाल में जब्ती में अधिकतम लगभग 69% वृद्धि हुई है. श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया. नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति

0: about the effects of anorexia. Well, good evening, Kolkata. This is 100.1 Akashwani FM Gold. Time to enjoy international music. The show is Musical Bandbox, and I'm Namrata with you today.
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 की धारा 12 के तहत पात्र नागरिक निशुल्क कानूनी सहायता न्याय बंधु मोबाइल ऐप और www.probono-toj.in से प्राप्त कर सकते हैं।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: आपके परिवार के जो बड़े लोग हैं उनके साथ परीक्षा पे चर्चा पढ़ने के लिए कहिए, उसकी चर्चा कीजिए, और कोई मंत्र है तो खास लाइन करके बताइए, देखिए ये पीएम ने ये कहा है तुम पढ़ो।
1: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक शुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद, देश की संप्रभुता तथा नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाली सभी ताकतों के खिलाफ अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत शांति, एकता और संप्रभुता को भंग करने की कोशिश कर रहे आतंकी संगठनों और आतंकवाद को प्रायोजित करने वाले देशों को दृढ़ता से जवाब दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा के 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर ने आज लोकभवन में तमिलगा वेत्री कड़गम तिविके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि बैठक के दौरान राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अडेरकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। पश्चिम बंगाल में नवनिर्वाचित भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविन्द्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और भाजपा शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जाँच में सहयोग करेंगे। पतन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा है कि वर्तमान में भारत स्थिरता का अड़िग स्तंभ है और यह साझा जल क्षेत्रों में त्वरित संकटकालीन सहायता और सुरक्षा की गारंटी देता है। श्री सोनोवाल ने आज नई दिल्ली में 10वें हिंद महासागर संवाद को संबोधित किया। श्री सोनोवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सुरक्षित, समावेशी और समृद्ध हिंद महासागर क्षेत्र को सक्रिय रूप से आकार दे रहा है। श्रम और रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई श्रम संहिता के अंतर्गत 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए आज राष्ट्रव्यापी वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल का शुभारंभ किया। नई दिल्ली स्थित कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में देश के कार्यबल और युवा शक्ति के प्रति सम्मान में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का किया। सेमीफाइनल में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भकत और कुमकुम मोहत की टीम का सामना चीन से होगा। भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अपने से ऊपर का जो स्टूडेंट है, हमसे ज्यादा होशियार है, उसको कहो 5-10 मिनट मेरे साथ बैठो, मुझे बताओ मैं ये सोच रहा हूँ ठीक है क्या, तुम करेक्ट करो।
0: परीक्षा से जुड़े किसी भी प्रश्न या समस्या के समाधान हेतु NCPCR द्वारा आयोजित लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में विशेषज्ञों से सीधे बातचीत करें, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
2: नमस्कार दोस्तों, 100.1 FM गोल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडियो की घड़ी में समय हो गया 5:21 का और मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम
3: खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर। चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM गोल्ड पर, FM गोल्ड पर।
2: जी हाँ, चाय एंड क्लासिक्स है प्रोग्राम का नाम, जहाँ बातें होती है नॉस्टैल्जिक और पुरानी यादों में हम खोए चले जाते हैं। दोस्तों, शाम धीरे धीरे उतर रही है, दिन का शोर पीछे छूटने लगा और रोशनी का रंग थोड़ा फीका, थोड़ा मुलायम हो गया। कि वही वक्त होता है जब बाहर की दुनिया अपने आप धीमी पड़ जाती है और भीतर की दुनिया थोड़ा साफ सुनाई देने लगती है। ऐसे में अगर हाथ में कप चाय हो जिसकी भाप अब भी हल्की हल्की उठ रही हो और सामने कोई खुली किताब हो, तो लगता है जैसे समय ने अपनी रफ्तार कुछ देर के लिए कम कर दी है। चाय एंड क्लासिक्स में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है और आज की ये शाम किसी खास तारीख से बंधी नहीं है, ये बस एक ऐसी शाम है जिसे हम सब अपने अपने तरीके से जीते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि आज हम इसे थोड़ा ठहर कर महसूस करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कई बार बिना किसी खास वजह के भी कुछ पल बहुत खास हो जाते हैं। दोस्तों, किताबों की दुनिया, किताबों की दुनिया भी कुछ ऐसी ही होती है। वे हमें बुलाती नहीं, लेकिन जब हम उनके पास जाते हैं तो वे हमें रोक लेती हैं। एक पन्ना खोलते हैं और धीरे धीरे हम उस दुनिया में उतरने लगते हैं जहां सब कुछ थोड़ा थोड़ा अलग होता है, भावनाएं थोड़ी गहरी होती है, समय थोड़ा ठहरा हुआ होता है और हर छोटी सी बात का एक अर्थ होता है। तो आज किताबों को लेकर हम बात करेंगे चाय एंड क्लासिक्स में, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कौन सी कहानी जो आपने किताब में पढ़ी है वो आज तक आपको याद है? जी हाँ, ऐसी कौन सी कहानी जो आपने पढ़ी है किताबों में आज तक आपको याद है और क्या कारण है उस कहानी को अब तक याद रखने का? फिलहाल सोचिए सोचिए, फोन लाइंस खुली हुई है, आज से बातें होंगी ढेर सारी। फिलहाल के लिए गाना सुन लेते हैं।
4: किसकी आंखों का नूर हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसके दिल का करार हो तुम, ये किसकी आंखों

0: तो दोस्तों स्टार्टिंग में ही हमारे पहले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्या बातें करना चाहते हैं। काफी दिनों बाद बातें होंगी उनसे। हेलो,
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइन क्लासिक्स में। कैसे हैं बताइए
1: जी? दीदी एकदम स्वस्थ है, मस्त है, जबरदस्त है।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है, बताइए आप नाम बताइए हमारे सभी लिसनर्स को आपका।
1: जी मैं पारस पंडित चुचरा हुगली से बोल रहा हूँ।
0: जी पारस जी, कैसे हैं? घर पे सब स्वस्थ मस्त एकदम?
1: जी दीदी स्वस्थ मस्त, और आपका भी मैं कामना करता हूँ कि आप भी स्वस्थ और मस्त होंगी।
0: एकदम, बस आप लोगों की दुआ है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
1: एक दूसरे का दुआ ही एक दूसरे को जीवित रखते हैं।
0: एकदम एकदम सही बताया आपने, सही बताया।
1: तो दीदी किताब तो एकदम ज्ञान का भंडार होता है। किताब से ही मनुष्य को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है।
0: जी
1: जी, तो मैं बचपन में विष्णु शर्मा लिखित पंचतंत्र, उसमें जो जो छोटी छोटी कहानियां होती थी वो बहुत ही शिक्षाप्रद कहानियां होती थी, और वो मुझे बहुत ही अच्छा लगता था।
0: अच्छा अच्छा,
1: और जिस तरह मैं बड़ा हुआ उसके अनुसार फिर मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास सेवा सदन,
0: अच्छा,
1: और सारा आकाश, ये मुझे दो बहुत ही प्रिय।
0: अच्छा, ये कहानियां क्यों आपको याद रहेगी? मतलब इतनी फेवरेट बता रहे हैं, काफी पसंद है आपको, ये पढ़ा आपने जो भी, तो क्यों याद रहेगी? मतलब कोई कारण, कोई विशेष कारण इसका?
1: कारण दीदी, मतलब उससे क्या होता है कि मतलब

0: शरीर को एनर्जी मिलता है और उसमें जो शिक्षा होती है उसे अनुसरण करने से बहुत ही अच्छा लगता है।
1: तो पंचतंत्र वगैरह अपने बच्चों को सुनाते हैं आप?
0: जी जी जरूर जरूर, जैसे चार किसान, एक किसान और चार बेटे की कहानी हुआ, वो बहुत ही मैंने एकता में बल, ये एक शिक्षा प्रद कहानी थी। फिर उसके बाद प्यासा कौवा,
1: ये तो बहुत मतलब, बहुत मतलब अभी भी बच्चे उनकी टेक्स्ट बुक्स में मिलते ही है ये कहानी।
0: दे दे दे। तो ये सब कहानियां बहुत ही हमें अच्छे लगते थे और बच्चों को भी इसके बारे में हम पढ़ाते हैं।
1: लाइफ में बहुत बेसिक चीजें सीखने के लिए ये कहानियां बहुत जरूरी है।
0: जरूर जरूर जरूर जरूर।
1: चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच पारस जी। बताइए कोई गाना अगर रिक्वेस्ट खास करना चाहते हैं आप?
0: तो आज एक खास गाना रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ
1: जी, बिल्कुल बताइए।
0: फिल्म का नाम है कश्मीर की कली और ये चांद सा रोशन चेहरा
1: जी।
0: ये
1: चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं आपसे। ओके
0: ओके दीदी, आपसे तो अब मुलाकात होती रहेगी। दिल बहुत गार्डन गार्डन हो गया। आप लोगों ने फोन लाइन खोल दिया तो बहुत ही अच्छा लग रहा है।
1: चलिए बहुत अच्छी बात है, हम भी बहुत खुश हैं।
0: गाने सुनते थे लेकिन आप लोगों से बात नहीं होता तो मायूस रहते।
1: कोई बात नहीं। ये जो हम लोग जो थोड़ा अलग अलग थे कुछ दिनों के लिए किसी कारणवश, वो मजबूरी थी। अब मजबूरी तो हमेशा रहती नहीं है ना।
0: नहीं नहीं नहीं। आप लोगों से बात करने से दीदी एक एनर्जी मिल जाता।
1: थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच पारस जी, मिलते हैं आपसे फिर। ठीक है चलिए, आपका फेवरेट।
0: धन्यवाद दीदी, गुड इवनिंग।
1: बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए चलिए सुनते हैं आपका फेवरेट गाना, पसंद का गाना, मतलब रिक्वेस्ट किया आपने जो। तो ये थे पारस जी और सुनना चाहते हैं कश्मीर की कली से। तारीफ करूँ क्या उनकी? चलो ये चलिए भाई, इंडीड आप लोगों की तारीफ जितनी भी करे कम ही है। तो फिलहाल के लिए सुन लेते हैं ये गाना।

तो दोस्तों, बचपन की यादों में जाएं तो किताबों के साथ जुड़ी सबसे पहली चीज जो याद आती है वो है उनकी खुशबू। नए किताबों की स्याही की महक एक अलग ही उत्साह देती थी। स्कूल के पहले दिन जब नई किताबें मिलती तो हम उन्हें बस पढ़ने के लिए नहीं बल्कि महसूस करने के लिए खोलते थे। पहले पन्ने पर अपना नाम लिखना जैसे एक घोषणा होती, अब ये किताब मेरी है और मैं इसका हिस्सा हूँ। धीरे धीरे वही किताबें हमारी आदत बन जाती है। कुछ कहानियां हमें हंसाती हैं, कुछ रुला देती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो समझ में पूरी तरह नहीं आती थी लेकिन फिर भी भीतर कहीं जगह बना लेती थी। समय के साथ हम उन कहानियों को भूल जाते हैं लेकिन उनका असर कहीं ना कहीं बना रहता है। तो जी हाँ, मेरा सवाल था आपसे यही कि ऐसी कौन सी लास्ट किताब आपने पढ़ी है या फिर किताबें पढ़ी हैं जिसकी कहानियां आपके दिल और दिमाग में अब भी छपी हुई है और क्यों। फिलहाल अरूप दा ने कॉल किया था हावड़ा से और सुनना चाहते हैं परिवार फिल्म से लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाज में ये अगला गाना हमारा।

तो दोस्तों बचपन के किताबों की बातें हो रही थी कि उन किताबों के साथ, उन स्कूल के किताबों के साथ, उन कहानियों की किताबों के साथ हमारा जुड़ाव किस तरह से था। कुछ ऐसा था, भले ही हम कहानियां भूल जाते हैं लेकिन उसका जो असर था, जो कहानियां हम पढ़ा करते थे बचपन में, भले ही उसका असर, वो कहानियां भूल जाते पर उसका असर अब भी हमारे साथ है। तो यही वजह है कि जब सालों बाद हम किसी पुराने किताब को फिर से खोलते हैं तो वो हमें एक नई कहानी सुनाती है। शब्द वही होते लेकिन हम बदल चुके होते हैं। हमारी समझ, हमारे अनुभव, हमारी सोच, सब कुछ थोड़ा अलग हो चुका होता है और इसलिए वही कहानी जो कभी साधारण लगती थी अब अचानक गहरी लगने लगती है। तो आपके लिए कौन से किताब है इतनी खास जिसे आपने पढ़ा और उसकी कहानी आपके दिलो दिमाग में अब भी रह गई? क्योंकि किताबों की यही तो खूबी है कि वे हर बार एक नई बातचीत शुरू करती है। वे हमें जवाब नहीं देती लेकिन सवाल जरूर देती है और कई बार यही सवाल हमें खुद के करीब भी लेके आती है। फिलहाल फोन कॉल का इंतजार है आपके और इंतजार करते करते सुनते हैं हमारा अगला गाना लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज में।

0: तो दोस्तों चलते चलते हमारे अगले जो कॉलर हैं वो भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ. चलिए देख लेते हैं कौन है. हेलो,
1: गुड इवनिंग पापिया जी.
0: गुड इवनिंग. गुड इवनिंग. बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स में.
1: मैं मोनिरुद्दीन लास्कर बात कर रहा हूँ दक्षिण से.
0: जी मोनिरुद्दीन दा, कैसे हैं बताइए, बहुत दिनों बाद.
1: काफी दिन इंतजार के बाद आपका दर्शन मिला, आपका वॉइस का दर्शन मिला.
0: चलिए बताइए घर परिवार में सब कैसे हैं.
1: वॉइस है हमारे लिए बहुत कीमती है.
0: घर परिवार में सब कैसे हैं बताइए, सब ठीक है.
1: आपका दुआ से बहुत अच्छा है.
0: चलिए बहुत अच्छी बात है. अच्छा फटाफट मुझे पहले बता दीजिए कि आप कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं.
1: हाँ मोहम्मद रफी का कोई भी गाना बजा दीजिए आपको पसंद का.
0: मोहम्मद रफी का कोई भी गाना. अच्छा ठीक है. तो फिलहाल मैं ये जानना चाहूंगी कि जो मैंने बात की किताबों के बारे में, ठीक है, लास्ट किताब कौन सी आपने ऐसी पढ़ी जो आपको याद रह गई.
1: जो शेक्सपियर का द मर्चेंट ऑफ वेनिस.
0: अच्छा.
1: वो जो स्टोरी है वो अच्छा लगा है और वो आज भी याद है हमारे.
0: कोई कारण, कोई विशेष कारण इसका.
1: वो जो कैरेक्टर है अस्तानियो बैसानियो फोर्सिया और साइलॉक, वो जो अस्तानियो साइलॉक के पास उधार लिया पैसे और वो दे नहीं पाया, इसीलिए साइलॉक उसको एक पाउंड मांस चाहा है माने लेने के लिए बोला है. लेकिन उसका दोस्त का जो वाइफ पुर्सिया वो एक लॉयर बनकर वो अस्तानियो के पास पास में दराया और केस लड़ा है और वो जो लॉजिक दिया वो आज भी याद है. तो चीप एक पाउंड मांस भी लेना चाहता है लेकिन एक पाउंड के ज्यादा मांस ले नहीं पाएगा नहीं पाउंड ही ले सकते हैं कट सकते हैं. और दूसरा बात है ये मांस लेगा लेकिन ब्लड लेने का कोई शर्त नहीं हुआ है. ये जो लॉजिक है बहुत अच्छा लगा है. और इसके स्टोरी में वो जो का पैसे के लिए अपने दोस्त के साथ किया रिश्ता टूट जाता है ये भी सीखा है. और हमारे संपर्क कैसा कैसा होता है, लॉजिक कैसा कैसा होता है, बहुत अच्छा सीखा दिया है स्टोरी.
0: तो आप रिकमेंड करेंगे कि बच्चे पढ़े ये स्टोरी.
1: ऑफकोर्स इसी तरह सिर्फ द मर्चेंट ऑफ वेनिस नहीं, शेक्सपियर की बहुत अच्छा अच्छा स्टोरी है वो पढ़े. रविन्द्रनाथ टैगोर की भी है, रविन्द्रनाथ टैगोर की है, शरदचंद्र चट्टोपाध्याय की है, विभूतिभूषण बंदोपाध्याय की है, बहुत सारे लेखक है, सब सारे स्टोरी पढ़े. तो रविन्द्रनाथ का घरे बाहरे और चिकन प्रेम का कहानी है वो हमने डिग्री कोर्स में पढ़ा है, बहुत अच्छा लगा है. इसी तरह वही सब पढ़े एवं अपने अपने ज्ञान अर्जन करके मेरा ख्वाहिश है. थैंक यू मैम.
0: किताबों की दुनिया में जुड़े रहे तो उतना अच्छा है हमारे लिए, है ना, क्योंकि कहते हैं ना कि बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स.
1: आपको तो समझ का आईना है, वो आईना जितना पढ़ता है उतना ज्ञान बढ़ता है.
0: जी तो थैंक यू सो मच मोनिरुद्दीन दा, फिर से जुड़ने के लिए. वापस मुलाकात होगी आपसे. ठीक है.
1: ओके बाय.
0: ठीक है चलिए बाय बाय. तो फिलहाल मोनिरुद्दीन था थे हमारे साथ. ढेर सारी बातें कि हमने मर्चेंट ऑफ वेनिस के बारे में, उन्होंने कहानी के बारे में बताया और साथ ही साथ रिकमेंड भी किया. तो आपके लिए ऐसी कौन सी किताब है जो जब आपने पढ़ी उसके बाद वो याद रह गई आपके लिए. तो फिलहाल उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में कोई भी गाना वो सुनना चाहते थे, तो सुन लेते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में लिखे जो खत तुझे कन्यादान फिल्म से.

कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, वे आगे बढ़ती, रूप बदलती और कई बार बड़े पर्दे तक भी पहुंच जाती। जब ये कहानी फिल्म बनती तो वो एक नया रूप हमारे सामने आता। जिन किरदारों को हमने सिर्फ शब्दों में महसूस किया था, वो चेहरे और आवाजों के साथ हमारे सामने होते हैं। फिलहाल के लिए इन फिल्मों के बारे में भी हम बातें करेंगे थोड़ी बहुत शायन क्लासिक्स में, पर अब समय हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। जी हाँ, न्यूज़ ब्रेक का। उसके पहले तलत महमूद की आवाज़ में चलिए गाना सुनते सुनते ये हमारा जो पहला घंटा है ये ख़त्म करते हैं।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत श्लोक सुभाषितम में प्रधानमंत्री

0: ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और कई अन्य मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश या कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री ने पटना में एक रोड शो भी किया। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्रे कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरलम में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीटों में से 102 सीटें जीती हैं। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अरलेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त ने आज नई दिल्ली में जनगणना जागरूकता के लिए 6 LED मोबाइल वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ये पहल राष्ट्रीय राजधानी में चल रहे जनगणना 2027 के पहले चरण के लिए चलाए जा रहे जन जागरूकता अभियान का हिस्सा है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। उधर भारतीय पुरुष रिकर्व टीम को पहले ही राउंड में हार का सामना करना पड़ा। IPL क्रिकेट में आज लखनऊ में शाम 7:30 बजे लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अनुजा कुमार। India today said it gave a befitting reply to Pakistan during Operation Sindoor for its sponsorship of cross-border terrorism. Briefing media in New Delhi, External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal stressed that cross-border terrorism has long been used by Pakistan as an instrument of state policy.
1: We are marking the first anniversary of Operation Sindoor. The entire world saw the Pahalgam terrorist attack for what it was. We gave a befitting reply to Pakistan for

खूबसूरत एक शाम जो है क्लासिक्स के नाम। आप सुन रहे हैं चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 FM।

0: मोमेंट पर चाय और क्लासिक्स, चाय और क्लासिक्स 100.1 एफएम गोल्ड पर, एफएम गोल्ड पर।
1: एक बार फिर से 100.1 एफएम गोल्ड पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पापिया हाजिर हो गई हूँ लेकर चाय एंड क्लासिक्स। और बातें हो रही थी किताबों और कहानियों की, तो जैसा कि आपसे कहा था दोस्तों इस ब्रेक से पहले कि कहानियां सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं रहती, वे आगे बढ़ती भी है और बढ़ते बढ़ते भाई फिल्मों का रूप भी ले लेती है। जैसे देवदास, एक ऐसी कहानी जिसमें प्रेम अपनी पूरी गहराई के साथ मौजूद है लेकिन वो अपने पूर्ण रूप तक पहुंच नहीं पाता। या गाइड, जहां एक व्यक्ति की यात्रा बाहरी दुनिया से शुरू होकर भीतर की खोज तक पहुंचती है। और फिर परिणीता, जहां सबसे ज्यादा असर उस बात का होता है जो कहीं नहीं जाती। फिल्में इन कहानियों को एक दृश्य रूप देती है लेकिन किताबें हमें उन्हें अपने तरीके से देखने की आजादी देती हैं। और शायद यही कारण है कि कई बार हम किसी किताब के किरदार को अपनी कल्पना में जितना करीब महसूस करते हैं उतना पर्दे पर देखने पर नहीं कर पाते। तो फिलहाल बताइए, आपके लिए सवाल था कि भाई ऐसी कौन सी किताब है जो आपने पढ़ी है और अब तक उसकी कहानी आपके दिल को छू कर रह गई है। फिलहाल लता मंगेशकर और सुषमा श्रेष्ठ की आवाज में हमारा अगला गाना सुन लेते हैं जो है फिल्म जख्मी से।

थैंक यू सो मच पायल, वेरी स्वीट, वेरी स्वीट, थैंक यू सो मच. आपने रिक्वेस्ट किया था आशा भोसले का कोई गाना सुनने का, तो मैं चला देती हूँ आपके लिए. और उसके बाद आपने जो गाना गाया ना, वो गाना भी हम सुनेंगे आरती मुखर्जी की आवाज में, ठीक है? तो स्टे ट्यून्ड.

0: परीक्षा एक ऐसा अवसर है और परीक्षा के लिए हेल्दी कंपटीशन की भावना हमारी तैयारी को और बेहतरीन बनाती है।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: इस प्यारे से खूबसूरत से गाने के बाद चलिए हमारे अगले कॉलर के साथ भी हम बात कर लेते हैं फटाफट। हेलो
1: हेलो
0: हेलो, बहुत बहुत स्वागत है आपका चायन क्लासिक्स।
1: गुड इवनिंग।
0: गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। कैसे हैं?
1: भट्टाचार्य बिहाला से बात कर रहा है
0: जी। अनिमेशता कैसे हैं? सब ठीक है घर परिवार में?
1: सब ठीक ठाक है। बीच बीच में बारिश हो रहा है।
0: हाँ हाँ,
1: गर्मी कुछ कम गया, ठंडी है, ठंडी हवा।
0: हाँ बस ये वेदर बुरा नहीं लग रहा है, क्यों है ना?
1: अच्छा लग रहा है,
0: कभी ठंडी कभी गर्मी थोड़ी सी।
1: अच्छा, महीना में तो शरद काल का हवा बहुत अच्छा लग रहा है।
0: एकदम एकदम एकदम। तो चलिए बताइए कि किताबों के बारे में आप क्या बताना चाहते हैं? आप काफी कुछ बताए।
1: तो मुझे अच्छा लगता है
0: जी।
1: तो हमने तो बंकिम चंद्र साहित्य सम्राट बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की द्वारा लिखी को उसे हम सुना, क्योंकि ये किताब ब्रेल में नहीं मिला, इसलिए हमको

0: जो बुक सुनना पड़ा, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि उसका जो लिखन शैली शब्द का जो इस्तेमाल किया उन्होंने, और जो चरित्र चित्रण किया कि सूर्यमुखी, हीरा, देवेंद्रो, नगेंद्रो, बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने लिखा और एक लेसन भी छोड़ गया हमारे लिए। उसी लिए ये किताब मुझको बहुत अच्छा लगा और हम कोशिश करूंगा कि दुर्गेश नंदिनी और जो है और जो जो उनको लिखे हुए किताब जो है उसे भी पढ़ने की कोशिश करूंगा। यह सही कि सब किताब बेल में नहीं मिलेगा, लेकिन कुछ ऑडियो बुक मिल सकते हैं कोशिश करने से।
1: ओके ओके,
0: तो हमारा आपके पास एक गुजारिश है, तो मुकेश की आवाज में फिर सुबह होगी फिल्म से, वो सुबह कभी तो आएगी।
1: ओके, एकदम, चलिए
0: गाना आपका पास हो तो सुनाइए।
1: हाँ बिल्कुल है, बिल्कुल सुनाएंगे आपको।
0: अच्छा नमस्ते,
1: थैंक यू सो मच कॉल करने के लिए, थैंक यू सो मच। तो ये थी अनिमेश दा हमारे साथ बातें की उन्होंने किताबों के बारे में। फिलहाल चलिए उनका रिक्वेस्ट किया हुआ गाना भी सुन लेते हैं हम।

0: कभी।
1: ये दोस्तों किताबों के सिलसिले में चाय का भी एक अहम स्थान है, अलग ही स्थान है। जी हाँ, ये केवल एक पीने की चीज़ नहीं बनती बल्कि एक अनुभव बन जाता है। जब हम चाय की चुस्की लेते हैं तो हम अनजाने में ही थोड़ा धीमे हो जाते हैं, हमारी रफ्तार कम हो जाती है और हम उस पल को थोड़ा ज़्यादा महसूस करने लगते हैं। किताब और चाय का ये मेल इसलिए भी खास है क्योंकि दोनों ही हमें ठहरना सिखाते हैं। चाय हमें वर्तमान में टिके रहने का एहसास देती है और किताब हमें भीतर की यात्रा पर ले जाती है। जब ये दोनों साथ होते हैं तो समय का अनुभव भी बदल जाता है। अक्सर ऐसा होता है कि हम किताब पढ़ते पढ़ते इतने खो जाते हैं कि पास रखी चाय ठंडी हो जाती है, लेकिन उस समय इसका कोई अफसोस नहीं होता क्योंकि हम कहीं और होते हैं, एक ऐसी दुनिया में जहां हर चीज को समझने का समय होता है। तो रात अब धीरे धीरे और गहरी होने लगी है, बाहर की आवाजें लगभग थम चुकी है। ये वही समय है जब हम अब अपने भीतर की आवाज को सबसे साफ सुन सकते हैं। दिन भर की भाग दौड़ में जो बातें दब जाती हैं वे अब धीरे धीरे सामने आने लगती है। किताबें इस समय की सबसे सच्ची साथी बन जाती है, वे कुछ कहती नहीं लेकिन बहुत कुछ समझा जाती है। एक वाक्य, एक विचार कभी कभी रोक लेता है, हम उसे दोबारा पढ़ते हैं फिर शायद एक बार और इस छोटे से ठहराव में हम अपने ही जीवन के किसी किस्से को देख भी लेते हैं। फिलहाल के लिए चलिए हम इस किस्से को थोड़ा सा विराम देते हैं और मोहम्मद नासिर जी ने कॉल किया था दरभंगा बिहार से, जी हाँ बिल्कुल इतने दूर से हमारे जो लिसनर हैं उन्होंने कॉल किया था, ढेर सारा प्यार जताया उन्होंने, साथ ही साथ रिक्वेस्ट भी किया इस गाने का, तो इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है। फिल्म का नाम है आप तो ऐसे न थे, मोहम्मद रफी की आवाज़ में। तो चलिए सुन लेते हैं ये गाना।

0: हो रहा है ऑलमोस्ट 6:40। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए चलिए हमारे अगले कॉलर को ले लेते हैं ऑन एयर। हेलो
1: हेलो
0: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है
1: दीदी भाई। हमें चुचुरोती के अशोक कौर बोल
0: जी। अशोक दा सब ठीक है? आप बिल्कुल ठीक है?
1: आप ठीक है? आप भी भालो आजन तो?
0: एकदम एकदम। घर परिवार में सब ठीक है ना?
1: सब परिवार सब भालो आजन।
0: चलिए बहुत अच्छी
1: बात। खुबी छोटो स्वामी स्त्री दुजन अलग छेले बो अलग तो बात।
0: बस एकदम छोटा परिवार सुखी परिवार। तो बताइए कैसा चल रहा है सब? ऐसे लाइफ ठीक चल रही है? ठीक ठाक चल रही है?
1: लाइफ तो पूरा बर्बाद हो गया, अभी बुरा हो गया, आंखों में रस नहीं कम गया, इसीलिए
0: कोई बात नहीं, ये भी एक फेज है, इसको भी एंजॉय करना चाहिए है ना। पूरी जिंदगी तो काम की
1: थोड़ा थोड़ा देखने से अच्छा है। पहले तो बास में काम करता था, पहले बास चलाता था, अभी तो छोड़ दिया। अभी 10 बच्चे हो गए, 10 साल 11 साल।
0: चलिए ये भी अच्छी बात है, रिटायरमेंट की लाइफ भी अच्छी होती है, जरूरत भी होती है। तो बताइए किताबों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: हम तो छोटा जब था हम लोग को सरस

0: चल रहे का वही पड़ा है, वही कम 12-6 क्लास तक पड़ा है।
1: अच्छा,
0: उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा वही पड़ा है, फिर उधर का वही जब गल्पों का वही चल जाए उसी सब पढ़ता था।
1: अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है ठीक है। आप कोई स्पेशल कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहेंगे?
0: हाँ, गाना कुमारा बाप से सके रहे गली तेरी मां सोनरी गोटे रे।
1: ओके ठीक है ठीक है अशोक, एकदम
0: सब आदमी के लिए सबको सुनाइए।
1: ओके,
0: सब जितना दूर तक जाएगा।
1: ओके बिल्कुल बिल्कुल, तो हमारे सभी लिसनर्स को डेडिकेटेड है भाई अशोक दा की तरफ से ये गाना कुमारा बाप से मोहम्मद रफी महमूद और इनक की आवाज में। तो चलिए सुनते हैं हम सब मिलकर, ठीक है?

सज रहे, अरे हाँ हाँ सज रहे रे सज

बच्चा देखा न कोई आगे न कोई पीछे, मैं तरस में आके ले चला उठा के माँ को दे दू मंदिर में रख दू। पंडे ने देखा वो जालिम समझा ये पाप है मेरा, बस मुझको घेरा। फिर पुलिस आई दी लाश दुहाई, वो एक न माना पड़ गया ले जाना। सोचा ले जाकर फेंकूंगा बाहर, सौ जतन लगाया कोई काम न आया। सड़कों पर बेचा गाड़ी में फेंका, बन गया ये बंदा इस गले का फंदा। मैं फिर भी टाला कचरे में डाला, फिर बारिश आई अंधियारी छाई, बिजली जब कड़की मेरी छाती धड़की। एक तीर लगा मैं वापस भागा, फिर बच्चे को उठाया गले से यूं।

0: 6:47 हो गया है टाइम और बात हो रही थी कहानियों के बारे में कि जीवन भी कुछ ऐसा ही है जहाँ एक कहानी जिसमें कोई अध्याय होते हैं, कई कुछ अध्याय आसान होते हैं तो कुछ कठिन, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका अर्थ हमें बहुत बाद में समझ आता है। हम कभी इस कहानी के नायक होते हैं, कभी एक साधारण पात्र और कभी कभी केवल एक दर्शक, लेकिन हर अनुभव हर घटना इस कहानी को आगे बढ़ाती है। तो इसी संदर्भ में द एल्केमिस्ट जैसी रचना हमें ये समझाने की कोशिश करती है कि जीवन केवल किसी मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, उस यात्रा को समझने का नाम है जो हमें वहां तक ले जाती है। फिलहाल हमारे फोन लाइन पर भी हमारे जो लिसनर हैं, बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं, वो इंतजार कर रहे हैं। चलिए देखते हैं कौन है। हेलो
1: हेलो जी, नमस्ते।
0: नमस्कार नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका चाइन क्लासिक्स में।
1: प्रोग्राम हमको उसको बहुत अच्छा भी लगता है हमेशा, और मेरे तरफ से हर दीदी को सलाम है, सबको और हर भाई को भी, आज लोग को।
0: थैंक यू सो मच। आप नाम बता दीजिए आपका, हम सब जानना चाहें। हेलो,
1: हाँ नाम नहीं बताया अभी।
0: नहीं, अभी अभी
1: नन्हे बोलना, बाटा नगर से।
0: जी जी नन्हे, जी जी जी नन्हे जी, वो तो हम आपको जानते हैं, लेकिन भाई बाकी सब भी तो जानेंगे है ना।
1: आज कोई चीज मिस्टेक कर रही आप अभी?
0: क्या मिस्टेक?
1: खैरियत नहीं पूछी अभी तक।
0: सॉरी सॉरी,
1: खैरियत पूछने का अंदाज बहुत अलग होता है।
0: तो कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है ना? घर परिवार में सब कैसे हैं बताइए?
1: एकदम ठीक, एकदम बढ़िया हो,
0: एकदम स्वस्थ और मस्त।
1: पांच बरस हम लोग
0: स्वस्थ मस्त और जबरदस्त। हाँ
1: हाँ, एकदम बढ़िया हो।
0: चलिए बहुत अच्छी बात है। आप कोई गाना रिक्वेस्ट करना चाहते हैं नन्हे जी, तो प्लीज बता दीजिए कौन सा गाना सुनेंगे।
1: फेवरेट सॉन्ग सिंगर है ना, अलका याग्निक कुमार सिंह है ना फिर, लेकिन मोहम्मद अजीज का गाना आजकल ज्यादा सुन रहा हूँ ना।
0: अच्छा ऐसा है। हाँ बताइए,
1: ला दीजिए कोई भी क्वेश्चन का आपका।
0: ठीक है ठीक है, चलिए सुनते हैं और फिर मिलते हैं आपसे। ओके
1: ठीक है, ओके
0: चलिए मिलते हैं। तो ये थे नन्हे बाटा नगर से। चलिए मोहम्मद अजीज और इस जानकी की आवाज में ये गाना सुन लेते हैं।

दोस्तों, आज की इस शाम में हमने किसी बड़े विषय को नहीं छुआ। हमने बस उन छोटे छोटे पलों को महसूस करने की कोशिश की जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। एक कप चाय, एक कुक होली किताब और कुछ सच्चे ख्याल, कई बार इतना ही काफी होता है, है ना? अगर इस पूरे सफर में आपको एक भी ऐसा पल मिला जहां आपने खुद को थोड़ा और समझा हो, तो शायद यही शाम की सबसे बड़ी खूबसूरती है। अब विदा लेने का समय आ गया है, लेकिन कहानियां यही खत्म नहीं होती, वे बस थोड़ा रुकती हैं ताकि अगली बार फिर से शुरू हो सके। आप अपने साथ इस शाम का ये सुकून लेकर जाइए। जब भी मौका मिले थोड़ी देर रुकिए और अपनी ही कहानी के कुछ पन्ने पलट कर देखिए। तो फिर मुलाकात होगी कल वापस एक नई शाम के साथ, नई कहानियों के साथ और उसी पुराने एहसास के साथ, जहां चाय की भाप और शब्दों की गर्माहट मिलकर एक अलग ही दुनिया बनाते हैं। फिलहाल के लिए घोल से तो विदा ले रही हूँ, लेकिन मिलूंगी रेनबो पर छाया लोक के साथ। तब तक के लिए आरती मुखर्जी की आवाज में सुनते रहिए 100.1 FM गोल पर ये गाना, दो नैना और एक कहानी। और

0: ऑपरेशन सिंदूर की पहली वर्षगांठ पर सशस्त्र बलों के शौर्य को नमन किया है। उन्होंने आतंकवाद और इसे बढ़ावा देने वाले तंत्र को नष्ट करने की राष्ट्र की प्रतिबद्धता दोहराई। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारतीय सशस्त्र बलों ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अद्वितीय साहस, सटीकता और दृढ़ संकल्प का प्रदर्शन किया। अपने संस्कृत सुभाषितम में प्रधानमंत्री ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में भारत की असाधारण विजय देश के बहादुर सैनिकों के उल्लेखनीय शौर्य और देशभक्ति का एक प्रेरक उदाहरण है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह समेत कई मंत्रियों ने ऑपरेशन सिंदूर में सशस्त्र बलों के शौर्य की सराहना की। इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
1: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय ने बताया कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जाँच में सहयोग करेंगे। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2, हिन्दुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और कई वरिष्ठ नेता तथा मंत्रिमंडल के सदस्य उपस्थित थे। प्रधानमंत्री मोदी ने पटना में एक रोड शो भी किया। तमिलनाडु में राजनीतिक गतिरोध के बीच नई सरकार गठित करने के लिए परस्पर वार्ता जारी है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने आज लोकभवन में तमिलग वित्री कड़गम टीवीके के अध्यक्ष सी जोसेफ विजय को आमंत्रित किया। लोकभवन से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि राज्यपाल ने स्पष्ट किया कि तमिलनाडु विधानसभा में सरकार बनाने के लिए आवश्यक बहुमत का समर्थन अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। उधर केरला में कांग्रेस पार्टी नई सरकार बनाने के लिए चर्चा कर रही है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने राज्य की 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट जीती है। केरलम के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर के तिरुवनंतपुरम पहुंचने पर उनसे संपर्क किया जाएगा। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली में मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफल से भेंट की। डॉक्टर मांडविया ने बताया कि दोनों नेताओं ने श्रमिक कल्याण और रोजगार के लिए सशक्त डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना के निर्माण के लिए सहयोग पर सार्थक चर्चा की। उन्होंने कहा कि श्री रामफल ने भारत के राष्ट्रीय कैरियर सेवा पोर्टल के बारे में विशेष रुचि दिखाई है। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भक्त और कुमकुम मोहोत की टीम का सामना चीन से होगा। उधर आईपीएल क्रिकेट में लखनऊ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ मैच में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। बेंगलुरु अंक तालिका में तीसरे और लखनऊ अंतिम पायदान पर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय।

0: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
1: अल्टीमेट गोल एग्जाम के नंबर नहीं हो सकता है, अल्टीमेट गोल संपूर्ण जीवन के विकास का होना चाहिए।
0: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरल में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा, उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर आज सशस्त्र बलों के साहस, प्रतिबद्धता और सर्वोच्च बलिदान को नमन किया। पिछले वर्ष इस दिन भारत ने ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के अंतर्गत पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में 9 आतंकी ठिकानों पर हवाई हमले कर 100 आतंकवादियों को मार गिराया था। ये पिछले वर्ष 22 अप्रैल को पाकिस्तान प्रायोजित पहलगाम आतंकवादी हमले का भारत की ओर से मुंह तोड़ जवाब था। इस अवसर पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरों के खिलाफ देश के अडिग रुख की ऐतिहासिक अभिव्यक्ति बताया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और सूचना तथा प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ऑपरेशन सिंदूर की वर्षगांठ पर भारतीय सशस्त्र बलों के शौर्य और बलिदान को नमन किया है। पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने दोषियों को कड़ी सजा देने का संकल्प लिया था।
1: इंडिया विल आइडेंटिफाई, ट्रैक एंड पनिश एवरी टेररिस्ट एंड देयर बैकर।
2: टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता।
0: इस बीच नई दिल्ली में आज विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ वैश्विक लड़ाई को मजबूत करने के लिए काम करता रहेगा।
3: पूरे दुनिया ने देखा किस प्रकार के बर्बरता के साथ पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था, जिसमें 26 मासूम लोगों की जानी गई थी। हम लोगों ने पाकिस्तान को उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के जरिए मुंहतोड़ जवाब दिया उनके सीमा पार से आतंकवाद के समर्थन के लिए। पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सीमा पार से आतंकवाद को एक इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी की तरह उसका इस्तेमाल करता है।
0: बांग्लादेशी घुसपैठियों के बारे में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि देश में अवैध रूप से रह रहे किसी भी विदेशी नागरिक को देश के कानूनों, प्रक्रियाओं और व्यवस्थाओं के अनुसार वापस भेजा जाना चाहिए।
3: जो लोग अवैध ढंग से हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसमें हमको बांग्लादेश की सहयोग चाहिए ताकि वो उनको रिपेट्रिएट किया जाए अपने देश। पिछले कुछ साल में 2860 से ऊपर ऐसे मसले हैं जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रीय सत्यापन के लिए बांग्लादेश को खबर किया है और ये सभी मामले उनके यहाँ लंबित हैं। हमारा ये नीति है कि जो भी विदेशी नागरिक हमारे यहाँ अवैध रूप से रह रहा है वो उनको अपने देश जाना पड़ेगा।
0: कनाडा में खालिस्तानी समूहों के बारे में प्रवक्ता ने कहा कि चरमपंथी और अलगाववादियों का कनाडा की जमीन को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करना चिंता का विषय है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते। टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जीत और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभी।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल में नई सरकार के गठन की तैयारियों के बीच विधानसभा को औपचारिक रूप से भंग कर दिया गया है। राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आज मौजूदा विधानसभा को भंग करने का आदेश जारी किया। ये

0: सत्ता हस्तांतरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि राज्य शनिवार को शपथ ग्रहण के साथ अपनी अगली सरकार के गठन की ओर अग्रसर है। एक रिपोर्ट।
1: बंगाल में भारी बहुमत से जीत के बाद बीजेपी नए सरकार की शपथ ग्रहण समारोह को राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक कार्यक्रम का रूप देना चाहती है। अगले शनिवार रविंद्र जयंती के दिन ब्रिगेड परेड ग्राउंड में बंगाल की पहली बीजेपी सरकार की शपथ होगी। दो दिन पहले से ही ब्रिगेड में मंच और सुरक्षा तैयारियों का काम शुरू हो गया है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, जेपी नड्डा सहित कई केंद्रीय नेता मौजूद रह सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित विभिन्न राज्य की मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों को भी आमंत्रित किया जा रहा है। आकाशवाणी समाचार के लिए कलकत्ता से अभिरूप भट्टाचार्य जी।
0: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल कोलकाता पहुंचेंगे। वे नव निर्वाचित भाजपा विधायकों के साथ बैठक में शामिल होंगे, जिसमें पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। इस बीच राज्य में भारतीय जनता पार्टी नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के शिव मंदिर निवासी विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर पूछताछ की है। आरोप है कि कल रात कोलकाता के मध्यम ग्राम में भाजपा नेता के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ की हत्या करने वालों ने उनकी कार की नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। 3 घंटे की पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें इस आश्वासन पर रिहा कर दिया कि वे आगे की जांच में सहयोग करेंगे। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी तमिलगा वेत्रिकड़गम टीवीके पार्टी का सरकार गठन के लिए बहुमत सिद्ध करने के मुद्दे पर गतिरोध बना हुआ है। दिन भर राज्य की राजनीति में बहुमत का आंकड़ा प्राप्त करने के लिए जोरदार प्रयास जारी रहे। एक रिपोर्ट।
2: दिन की शुरुआत टीवी के प्रमुख जोसेफ विजय और राज्यपाल विश्वनाथ अरलेकर की बैठक से हुई। बैठक में नई सरकार बनाने के लिए बहुमत साबित करने पर चर्चा हुई। राज्यपाल ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल एल सुंदरेशन की कानूनी राय लेने के बाद इस मुद्दे पर विचार किया गया। सेंगो तैयान और सीटीआर निर्मल कुमार जैसे टीवी के नेताओं ने सीपीआई और सीपीआईएम के नेताओं से उनकी पार्टियों से समर्थन मांगा। इस बीच एआईएडीएमके भी आज रात पुदुचेरी में पार्टी के महासचिव एडप्पाडी पलानी सामी के नेतृत्व में विधायक दल की बैठक कर रही है। चेन्नई से जॉय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: उधर केरलम में कांग्रेस हाईकमान नई दिल्ली में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी पर्यवेक्षकों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर विचार करने के बाद नए मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय की घोषणा करेगी। केरलम प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने बताया है कि आज सुबह तिरुवनंतपुरम में हुई विधायक दल की बैठक में एआईसीसी अध्यक्ष को कांग्रेस विधायक दल के नेता का चयन करने का अधिकार देने वाला प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया गया। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: कांग्रेस विधायक दल की बैठक में केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने नव निर्वाचित विधायकों से नेतृत्व के मुद्दे पर चर्चा की। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सनी जोसेफ ने कहा कि ये पर्यवेक्षक अपनी रिपोर्ट पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व को सौंपेंगे। इस बार निर्वाचित विधायकों में वीडी सतीशन और रमेश चेन्नीथला सहित वरिष्ठ नेता शामिल हैं। वहीं वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल वर्तमान में सांसद हैं। केंद्रीय पर्यवेक्षकों ने आज संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा के विभिन्न घटक दलों के साथ भी चर्चा की। राजनीतिक सूत्रों के अनुसार कांग्रेस विधायक दल के नेता और अगले मुख्यमंत्री के बारे में अंतिम निर्णय इस सप्ताह के अंत तक लिया जा सकता है। शपथ ग्रहण समारोह राज्यपाल के चेन्नई से लौटने के बाद ही होने की संभावना है। राज्यपाल वर्तमान में तमिलनाडु से संबंधित आधिकारिक कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति पल्लू की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
0: असम में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार 12 मई को लगातार तीसरी बार शपथ ग्रहण करेगी। शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियों के लिए आज गुवाहाटी में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। प्रदेश पार्टी अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि शपथ ग्रहण समारोह गुवाहाटी में होगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी मुख्य अतिथि के रूप में इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि भाजपा विधायक दल की बैठक रविवार को होगी। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया। पटना के गांधी मैदान में आयोजित एक भव्य समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सेवानिवृत्त सैयद अता हसनैन ने 32 मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। मंत्रिमंडल में अब भाजपा के 15, जनता दल यूनाइटेड के 13, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के 2 और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा तथा राष्ट्रीय लोक मोर्चा से 1-1 मंत्री हैं। शपथ लेने वाले मंत्रियों में जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार भी शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार सरकार में शपथ लेने वाले सभी मंत्रियों को बधाई दी है।

0: कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ये आकाशवाणी है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में आज समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। एक रिपोर्ट।
2: यह आरक्षण प्रणाली वर्ष 1986 में शुरू की गई और पिछले 40 वर्षों में इसमें कई बदलाव किए गए हैं। अब अत्याधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से इसकी क्षमता का व्यापक विस्तार किया गया है। भारतीय रेलवे ने वर्ष 2002 में इंटरनेट आधारित टिकट सेवा शुरू होने के बाद से लगातार डिजिटल परिवर्तन को अपनाया है। इसी परिवर्तन के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने पिछले वर्ष जुलाई में रेल वन मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। रेल मंत्रालय ने बताया कि यह ऐप यात्रियों के बीच तेजी से लोकप्रिय हुआ है। रेल वन ऐप में अब AI आधारित कन्फर्मेशन की संभावना की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। यह नई सुविधा इस साल की शुरुआत से ही लागू की गई है, जिसे लोगों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है। इस पर वेटिंग टिकट के कंफर्म होने के अनुमान की सटीकता पहले के 53% से बढ़कर अब 94% तक हो गई है। अक्षत कुमार वेद्यान के साथ सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा है कि बदलती वैश्विक व्यवस्था में भारत और वियतनाम के पास वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने का एक बड़ा अवसर है। मुंबई में आज भारत वियतनाम व्यापार मंच को संबोधित करते हुए श्री लाम ने कहा कि भारतीय कंपनियों को वियतनाम में निवेश करने के लिए आमंत्रित किया जाए। कार्यक्रम में 8 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर भी किए गए। चीन के शंघाई में तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में पहुंचकर पहला पदक पक्का कर लिया है। सेमीफाइनल मुकाबले में आज भारत ने उलटफेर करते हुए वर्तमान विश्व विजेता दक्षिण कोरिया को 5-1 से हराया। फाइनल में दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत को टीम का सामना चीन से होगा। IPL क्रिकेट में लखनऊ में लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला बारिश के कारण रुका हुआ है। मैच रुकने तक लखनऊ ने 9 ओवर में बिना किसी नुकसान के 95 रन बना लिए थे। इससे पहले बेंगलुरु ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के लिए केरल, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकाल में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, तटीय कर्नाटक और रायल सीमा में कल तेज हवाओं और गरज के साथ बारिश हो सकती है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्र ने ऑपरेशन सिंदूर का पहला वर्ष पूरा होने पर सशस्त्र बलों की वीरता और बलिदान को नमन किया। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस ऑपरेशन को आतंकवाद के खिलाफ भारत के अटूट संकल्प का निर्णायक प्रमाण बताया। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने विधानसभा भंग की। तमिलनाडु और केरलम में सरकार गठन के लिए बैठकों का सिलसिला जारी। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली के स्थान पर अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली लागू करेगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के निर्देश दिए। वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने कहा उनका देश और भारत वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। आई एम अनुजा कुमार विद द न्यूज एट 9। द हेडलाइंस। Nation salutes bravery and sacrifice of armed forces on first anniversary of Operation Sindoor. President, Vice President and Prime Minister call it a defining testament to India's unwavering resolve against terrorism. West Bengal Governor dissolves assembly. Political parties on to form governments in Tamil Nadu and Kerala. Railways to move to upgraded passenger reservation system from August, replacing the 40-year-old

0: From the outset, the government gave us two clear directions, clear politico-military objectives and the operational flexibility to achieve these.
1: Addressing the nation on 12th of May, Prime Minister Narendra Modi made it clear that Operation Sindoor is not just a name, but is a reflection of the feelings of millions of people in the country and an unbroken pledge of justice. He outlined that if there is a terrorist attack on India, a fitting reply will be given.
2: ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है पूरी दुनिया ने इस प्रतिज्ञा को परिणाम में बदलते देखा भारत की सेनाओं ने पाकिस्तान में आतंक के ठिकानों पर उनके ट्रेनिंग सेंटर्स पर सटीक प्रहार किया आतंकियों ने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतना बड़ा फैसला ले सकता है लेकिन जब देश एकजुट होता है राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फौलादी फैसले लिए जाते हैं
1: He added that water and blood cannot flow together.
2: भारत ने तय कर लिया है खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता इतना अन्यायपूर्ण है कितना एकतरफा है
1: He stated that if there are talks with Pakistan, it will be only on terrorism. Prime Minister said,
2: Operation Sindoor jari hai. Pakistan ne dusahas ki agar kalpana ki, to use karara jawab diya jayega.
3: On the first anniversary of Operation Sindoor, you were listening to a special program on India's firm response against terrorism and unparalleled valor of Indian armed forces. This program was produced and presented by the News Services Division of Akashvani.
4: Spotlight.

0: आकाशवाणी FM गोल्ड खांटी शोना।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का देश के सभी एग्जाम वॉरियर्स के लिए विशेष संदेश।
2: शिक्षा की जीवन में भी जरूरत है, समाज जीवन में भी जरूरत है, इसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए।
1: NCPCR आयोजित कर रहा है परीक्षा पर्व, जिसके लाइव सेशन के दौरान आप परीक्षा से संबंधित प्रश्न एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं, जो कि 23 अप्रैल से 23 मई तक चलेंगे। अधिक जानकारी के लिए www.ncpcr.gov.in पर लॉगिन करें।
3: आपने सुनें गाने गाने बाजी मात, गाने गाने बाजी मात 100.1 FM गोल्ड।
4: আপনি শুনছেন 100.1 FM গোল্ড। এই বৃষ্টি ভেজা সন্ধ্যায় গানে গানে বাজিমাত নিয়ে চলে এলাম রাজর্ষি আর দেবারতে। আগামী পরশুদিন 25শে বৈশাখ, প্রাণের কবি মননের আলিম্পন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন। আজকের অনুষ্ঠান সাজানো রবীন্দ্রসঙ্গীত দিয়ে। প্রতিদিনের মতো আজও গান নিয়ে প্রশ্নের সাথে থাকে আপনার পছন্দের গানের ডালি নিয়ে শোনাতে গান।

কলার খোসাটা ভাই ফেলেছে তুমি।